तेरे बाप के मैं तो बराबर हूँ, क्या इतनी तुझे तमीज नहीं? मुझसे नजरें

0: You're listening RM-Free Radio. Radio. Radio.
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉ विनाम गुलाम और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है। मॉरिशस का लक्ष्य क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री पार्क विकसित करना है। ओशन वीक के दौरान मछली पालन, बंदरगाह विकास और समुद्री संरक्षण से जुड़े कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। काजिनो एम्प्लॉयज यूनियन का कहना है कि मॉरिशस के काजिनो का निजीकरण कोई समाधान नहीं। यूनियन ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से बैठक की मांग की है। एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स यूनियन ने जनता के कुछ लोगों द्वारा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन टीमों के प्रति बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई। डॉक्टरों के अनुसार घटनास्थल पर डराने धमकाने की घटनाएं उनके बचाव और उपचार कार्य को लगातार अधिक कठिन बना रही हैं। और विदेश में दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एम्बिशन क्रूज शिप पर लगभग 1700 यात्रियों को पेट संबंधी संक्रमण की आशंका के चलते रोका गया। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर कुछ तेज हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटो पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाइयों पर कहीं कहीं कोहरे छाए रह सकते हैं। अनुमान है कि आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, खासकर दोपहर में। रात को हल्के बादल घिराएंगे और ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम तापमान जो है 14 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

0: अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, हवा जो है पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:31 पर, सूर्यास्त 5:41 पर। पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए और मैं तीदे, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मा काना मा यकून का बयान उन्हें सिखाया, सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्जे और पेड़ सजदा करते हैं, और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेइत्तदाली न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन न घटाओ, और जमीन रखी मखलूक के लिए इसमें मेवे और गलाफ वाली खजूरें और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल, तो ऐ जिनो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे।

0: उसने आदमी को बनाया बचती मिट्टी से जैसे ठीकरी, और जिनको पैदा फरमाया आग के लौके से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? उसने दो समंदर बहाए के देखने में मालूम हो मिले हुए, और है उनमें रोक के एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? उनमें से मोती और मोंगा निकलता है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे? और उसी की है वो चलने वालियां के दरिया में उठी हुई है जैसे पहाड़, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे?
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي

जमीन पर जितने हैं सबको फना है और बाकी है तुम्हारे रब की जात अजमत और बुजुर्गी वाला, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उसी के मंगता है जितने आसमानों और जमीन में हैं, उसे हर दिन एक काम है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। जल्द सब काम निपटाकर हम तुम्हारे हिसाब का कस फरमाते हैं, ए दोनों भारी ग्रोह, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

ऐ जिनो इंसान की ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहां निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तुम पर छोड़ी जाएगी बेधुएं की आग की लपट और बेलपट का काला धुआं, तो फिर बदला न ले सकोगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख निरी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

तो उस दिन गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन से, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। यह है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं, फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के जलते खोलते पानी में, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बहुत सी दानों वालियां, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बहते हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें हर मेवा दो दो किस्म का, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

और ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीस का और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उन बिछौनों पर वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, उनसे पहले उन्हें न छुआ किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। गोया वो लाल और मूंगा हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

नेकी का बदला क्या है मगर नेकी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। नहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें दो चश्मे

क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकला और कुछ वापस न लाया।

94.95 Wave RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jenny Seyarangam.

तो बस तमे फायदामां रहेशो. सो ऑलवेज रिमेम्बर के भाई बीजाना माटे जे तमारी वेल्यू करता होय एवा लोकोनी साथे रहो, जे लोको तमारी वेल्यू ना करे एवा लोकोथी भाई दूर रहो. जीवनमां प्रॉब्लम्स आवी जाय तो बस एक ज मंत्र थई जशे. पार्थिव गोहिलना वॉइसमां मुकायेलुं आ गीत छे अगेन, थई जशे विथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑल अराउंड यू.

वो हमारी साथे गाइस आ हतो गीत फ्रॉम द मूवी विक्किडानो वरघोड़ो एंड अ ब्यूटीफुल वॉइस सोनू निगम ऑफ कोर्स आज ना आपड़ा कार्यक्रम में मधुर गुजराती गीतो तमारा माटे अमे चलावी रहा छे एंड विद दिस कमिंग अप आपड़ो आगलू गीत जे छे तू तो गयो दर्शन रावल एंड आकाशा सिंह ना वॉइस में

नमस्कार, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो हृदय प्रभु भक्ति का सागर कहलाता है, उस हृदय में प्रभु का वास होता है। जो हृदय प्रभु चरणों में भक्ति के पुष्प अर्पण करता है, उस हृदय को प्रभु कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए, इसी भक्त हृदय को लेकर हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं। आरंभ में गणेश जी की जय जयकार से वातावरण को पवित्र बनाते हैं। ध्यान करके एक दंत गजानन का गणपति कृपा के पात्र बन जाएं हम।

जो राम नाम जपता है, जो सिया नाम गाता है, वह परम सुख का अधिकारी होता है। राम की कृपा रहे तो भक्त को कभी दुख कभी कष्ट नहीं पहुंचेगा। भक्त को हर दुख का सामना करने का बल प्राप्त होता रहेगा। वन के वास के लिए जो हिम्मत सिया राम में थी, वही हिम्मत प्रभु भक्तों को प्रदान करते हैं।

जो मिठास कान्हा की बांसुरी में है वही मिठास उनके भक्तों के हृदय में भी पाई जाती है और इस मिठास को अगर हम सारे संसार में फैलाएं तो संसार के उद्धार में मानिए हम हाथ अवश्य बटा रहे हैं।

हनुमान जी की महिमा गाकर आइए हम अपने हृदय को गदगद कर लेते हैं। हनुमान जी के भोलेपन और सेवा भाव से ही तो उनकी राम भक्ति को इतनी मान्यता प्राप्त हुई है। संकट मोचन का गुणगान करके आइए हम हनुमान भक्ति का आनंद लें।

हनुमान जी की महिमा को कौन नहीं जानता, फिर भी बार बार उनकी महिमा गाना, उनका गुणगान करना भक्त के लिए बड़ा आनंदकारी होता है।

जब भी स्मरण करते हैं हम शिव शंकर त्रिपुरारी का, तो संसार के लिए कोई न कोई भलाई करते हुए ही विचार में आते हैं। कभी गंगा को जटाओं में धारण किया, तो कभी विष का पान किया। गंगाधर बनकर, नीलकंठ बनकर भक्तों के हृदय में भलाई का बीज बोया है भोलेनाथ ने।

इस माँ आरती के साथ समाप्त होता है आज का भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। भक्ति की धारा यूं ही बहती रहे, भक्त हृदय यूं ही आनंद में रहे, यही प्रार्थना है प्रभु से। नमस्कार।

聊挑战，明星也有训练，帮短短一年太新鲜，记得四哥发哥。

0: Check your time. It's exactly noon. आइए सुनते हैं समाचार करुणा के साथ. नमस्कार.
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने सरकारी संस्थानों में वित्तीय अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट 2023 के तहत जारी नई गाइडलाइंस में FCC ने सार्वजनिक संस्थाओं से मानकीकृत कार्य प्रणाली मैनुअल यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मैनुअल्स लागू करने को कहा है. कई सरकारी संस्थानों की जांच के दौरान आयोग ने पाया कि सार्वजनिक खरीद यानी प्रोक्यूमेंट, लाइसेंस जारी करने और कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लिखित और स्पष्ट प्रक्रियाओं की कमी है. FCC ने यह भी बताया कि प्रक्रियाओं में सुधार के लिए पहले दी गई लगभग 90% सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं. अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का समापन अफ्रीकी और यूरोपीय राष्ट्र नेताओं की एक संयुक्त घोषणा के साथ हुआ, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल विकास, रोजगार और अफ्रीका के औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया. डॉक्टर नवीन राम गुलाम और केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो के बीच मुलाकात के साथ मॉरिशस और केन्या के संबंध मजबूत हुए हैं. अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर नैरोबी

0: में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने केन्या के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक करार दिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अनुसार ये यात्रा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाती है जिसे वे एक नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुतो ने मॉरिशस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने अफ्रीका फोरम सम्मेलन की सफलता में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के योगदान की खुलकर प्रशंसा की। इंडियन चैड लेबरहुड कॉन्फ्रेंस पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन इंडियन चैड लेबरहुड प्रोजेक्ट की एक प्रमुख पहल से जुड़ा है जिसका सचिवालय मॉरिशस में है। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर के गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक विशाल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। विदेशी स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को महान नेता कहा और चीन के साथ शानदार भविष्य की बात कही। द्विपक्षीय वार्ता से पहले अपनी शुरुआती टिप्पणी में ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति से मिलना और उन्हें अपना दोस्त कहना उनके लिए गर्व की बात है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रॉयल रोड पेलग्रेन सेवास्तोपोल में 50 साल के 50-year-old श्री रामजीत जुगोरो जो जॉन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड पेलग्रेन सेवास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए पेलग्रेन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टर 2 PM। रोटवाया कथसे में 69 साल के 69-year-old श्री गौकरण जांगी जो माओ से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पुनावती जांगी के मकान रोटवाया कथसे से उठाकर दाह संस्कार के लिए डिफ्रिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टर 2 PM। और बंजन ने लालमाटी में 82 साल के 82-year-old श्री शिवनंदन भजन जो शिव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 इनके मकान बंजन ले लालमाटी से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौडिमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening RM Free Radio.

0: जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो, एक कर्ज मांगता हूँ बचपन उधार दे दो। यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपने बचपन की ओर बढ़ नहीं सकते और वक्त जो है वो बीतता चला जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुहाना सफर के हमारे सभी लिसनर्स का हम स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ। 12:13 हुए हैं और आज है 14 मई। 12, 13, 14 क्या हो गया? चलो अच्छी बात है, तो साथ दीजिएगा ज़रूर। आप हमारा नंबर आपको पता है, अगर फ़ोन करना है 4028 7 0, नहीं तो आप 5250 5250 6200 यानी 5250 6200 पे अपने मैसेज भेज सकते हैं। खूबसूरत गीतों का ये जो ख़जाना है आप पर लुटाने के लिए ही आए हैं। हर तरीके के खूबसूरत गाने लेकर आए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो साथ देते रहिए, झूमते रहिए, घूमते रहिए, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं ये बताते चलिए। हाँ, हमारा जो टिकटॉक है वो थोड़ी देर में अभी लाइव होगा, यानी कि 10 मिनट में शायद हम लाइव होने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप बस गाने सुनिए और तैयार हो जाइए टिकटॉक पे लाइव जुड़ने के लिए।
1: RL3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाना है लेकर आए हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। खड़ी मिलाती छड़े दिन के 12:18 हुए हैं और मैं हूँ विदिता, आपके साथ रहूँगी 2 बजे तक। चले जी, सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म गाने हो और गर्मा गर्म लंच, तो कहेंगे पोना बेची।

0: जितने भी हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है उन सभी का हम स्वागत करते हैं। 12:22 लो 23 मिनट भी हो गया तो हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे हम 2 बजे तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज वैसे भी गुरुवार हैं और गुरुवार के दिन हम जानते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हैवी फील होता है क्योंकि कल फ्राइडे है। बस एक बार फ्राइडे आ जाए ना फिर सब मूड में आ जाते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आपका साथ दे रहे हैं हम आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर
1: RM3 Radio.

0: है हमारे लिसनर से बात करने का, ये तो समय है उनसे मिलने का और इनके दिलों के बारे में जानने का। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: बड़े दिनों के बाद भी
0: बड़े दिनों में खुशी का दिन आया।
1: सचमुच आप कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ। अनीता जी है ना?
1: बताइए, आपको फोन करती हूँ ना बोर करने के लिए।
0: बहुत परेशान करती है अनीता जी, बहुत परेशान करती है, मैं तो बात ही नहीं करती।
1: अगर हम अपनी दोस्त को परेशान नहीं करेंगे तो और किसको परेशान करेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, हाँ। आपने बात सही कही, मैं यही इंतजार कर रही थी कि आप मुझसे यही कहेंगे। चलिए बताइए। अब ये अलग बात है कि जैसे आप मुझसे लड़ रही हैं वैसे ही मेरा मन करता है, जब गाना चलाना है चलाओ, ना चलाना है ना चलाओ।
1: नहीं, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही
0: हूँ। आपको एक बात बताऊँ मैं अभी, मुझे पता है क्या लग रहा है, अगर आप मेरे पास होती ना मैं आपको एक जादू की झप्पी देती जोर से।
1: गिनीसा की तरह, गिनीसा जी भी मुझे जादू की पप्पी देती है।
0: बहुत अच्छी बात है, वो पप्पी देती है, मैं झप्पी देंगू। ठीक है,
1: थैंक यू।
0: आप बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: दो स्वीट स्वीट फ्रेंड हो।
0: थैंक यू जी, बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: फिल्म पुराने फिल्म मिलन के, सावन का महीना, पवन करे शोर।
0: सावन का महीना, ठीक है जी, सावन का महीना। अभी तो सावन का ही महीना लग रहा है, अभी सर्दी का महीना लग रहा है, इतनी सर्दी लग रही है सुबह सुबह।
1: कैसा? हमारी भी यहाँ ठंडी लग रही है।
0: अच्छा जी, अब चलो ठीक है, आपने हमें याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी,
1: हाँ, गाना आपके लिए, आपकी सभी टीम के लिए, हमारी सारी फैमिली और फ्रेंड के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।
1: शुभ दिन,
0: शुभ दिन आपको भी। चलिए एक और श्रोता से मिलते हैं। हेलो,
2: नमस्ते विजिता।
0: हाँ बाबू नितवा जी, कैसे हैं?
2: अच्छा अच्छा, आप कैसे हैं?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: काटरबोन से।
0: काटरबोन में भी सर्दी होती है ना?
2: बहुत ठंडा है।
0: लेकिन गाने तो गरम गरम मिल रहे हैं आपको, है ना?
2: हाँ, चाय गरम,
0: चाय गरम, पकौड़े गरम, गाने गरम गरम,
2: हम लोग बोलते हैं।
0: हाँ चलिए बताइए, अभी कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: एक जीवनन का फिल्म था, एक फिल्म था, उसका नाम था माया।
0: माया,
2: हाँ एक फिल्म था जीवनन, जिसमें एक्टर था।
0: गाना कौन सा है?
2: जिंदगी है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल,
0: अच्छा
2: मीठी जबान।

0: बाबू नटवर जी एक सवाल पूछूं आपसे,
1: आप जानते हैं ये गीत?
0: मुझे पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मिला तो
1: आप भी गाते हैं?
0: मैं गाती हूँ। अरे वाह, जिंदगी है क्या। मुझे तो वो गाना पता है, जिंदगी क्या है गम का दरिया है, ये पता है मुझे।
1: क्या तू डरना क्या सुनता है?
0: वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे ये सब गाने पता है। तो मैं माया को ढूंढने की कोशिश करूंगी, नहीं मिली तो अपनी चाची से मिल लूंगी। मेरी चाची का नाम है माया, नहीं मिला तो उनको बुला के गाना गवा दूंगी। हाँ नहीं सुनिए, आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर मुझे माया फिल्म का ये गाना नहीं मिला तो मैं अपनी चाची को ले आऊंगी, उनका नाम है माया, तो उनसे गाना गवा दूंगी। ठीक है,
1: मिलेगा,
0: बताइए। तो फिर ये गाना आपके लिए और पूरी फैमिली के लिए है ना?
1: पूरी फैमिली।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें याद किया।
1: विदेश, उसका नाम है विदेश। मेरी बेटी है भावना। मेरी बहू का नाम है पूजा
0: जी,
1: और मेरी पत्नी का नाम है उषा
0: जी। ठीक है जी, चला
1: पूरी अनाटा फैमिली का तो बोन से
0: हो जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आपको। नमस्कार।
1: शुभ दिन है।
0: नमस्कार।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर। बोला चल चमेली बाग में हम मेवा खाएंगे, अभी तो लंच टाइम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लंच ले रहे हैं तो बुना पेची और बाकी हमारे खूबसूरत पुराने गाने हैं आपके लिए, जो खास चुनकर लाए हैं आपके लिए। एक से एक अलग खूबसूरत प्यारे गाने हैं अभी के लिए। तलत महमूद और लता जी की आवाज़ों में पेश है हमारा ये अगला गाना। फिल्म का नाम है वो दिन याद करो।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: देखा प्यार में ऐसा होता है कि इंसान गिनती भी भूल जाता है, बेचारा 1, 2, 3 में ही अटक के रह गया, इसके आगे तो गया ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन प्यार में कुछ

0: लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। आपने वो गाना सुना है, एक दो तीन चार पाँच, ये भी 13-12 पता नहीं कहाँ तक चले गए थे। अभी के लिए जो है हम अपना जो प्रोग्राम है इसको आगे ले जाएंगे अगले गाने के साथ। और अगला गाना हमारा होने वाला है तुमसे अच्छा कौन है पम से, और गाना किसके नाम हम चला रहे हैं चलिए ये भी बताते चले आपको। ये गाना होगा हमारे इन तमाम लिसनर्स के लिए, संजय ओमी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? विमला लक्ष्मण जी नमस्ते, और साथ में यहाँ पर हम मिस्टर नुरैदीन का वेलकम करते हैं, कहते हैं आज पेरिस हमारी तो छुट्टी चल रही है, चलिए आप छुट्टी मनाओ और गाने सुनो। शमा जी नमस्ते, रिया कैसी हो, शिमला बिजादिर जी प्रणाम नमस्कार कैसी हो आप, अवाना को हम वेलकम करते हैं, कियाना एलियोना यहाँ पर कहते हैं कि नेक्स्ट गाना ब्रदर नील के लिए और कज़न रूबी के लिए, आज उनका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। और परी कहती हैं हेलो छुटकी कैसी हो, बिल्कुल वैसी हो। और अंजनी के शब के नाम गाना होगा, दीप्ति जी कैसे हो आप, स्वागत है आपका। एंड साथ में यहाँ पर एक और मैसेज आया है, आपने नाम तो नहीं लिखा लेकिन मेरा आपको आपका नाम कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसको आधा स्लिट करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर माधुरी जी स्वागत है आपका। और गाना किसके लिए होगा, हाँ जी बिल्कुल रीना हमारे साथ हैं और लीना भी हमारे साथ हैं, कहती है नीस निधि का बर्थडे है, उनके लिए एक खूबसूरत सा गाना। और साथ ही साथ यहाँ पर गाना होगा मिस्टर बाबा कौर के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और माया रामदोस जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू आप आई, तस्तीमा जी आपका स्वागत, कविता वरुणदयाल आपके लिए गाना होगा, और साथ में अक्रम हमारे साथ हैं स्वागत करते हैं, एंड शारदा सरस्वती का आपके लिए, लीना है बेल रोज से, और वहीं पे हमारे साथ रोहन गुड आफ्टरनून, एजे स्वागत आपका, मनीता जी नमस्कार हाय ट्रैवल वेलकम, एंड दीप्ति जगदीश, ललिता पमेला, और साथ में मिस्टर उमी दामिया हाय गुड आफ्टरनून। एंड चलिए जी यहाँ पर गाना होगा तरुण के लिए, और तरुण को स्माइल बहुत अच्छी लगती है, चलिए आपके लिए बड़ी सी स्माइल भेजते हैं और अगला गाना भी।
1: RL Free Radio, Radio, Radio.
0: Hi Sim, कैसे हो आप? और यहाँ पर मुझे लगता है लिवरपूल के फैंस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। और आशा लखनऊ, दीनू मोइदीन गुड आफ्टरनून, अनिश्ता आपके बेटे को आज 5 साल हो गए, कैरव राम प्रसाद को हैप्पी बर्थडे प्रंदी पापा से मम्मी की तरफ से।
2: मुझे कुछ होता है, आँखों में आँखें ना डालो,

मुझे कुछ होता है आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है।

कुछ होता है आंखों में आंखें ना डाल।

0: संभालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम और आपके लिए हम पेश करें हैं खूबसूरत पुराने गाने। घड़ी मिलाते चले दिन की 1:05 हुए हैं। हम टिकटॉक पे लाइव हैं, अगर आप चाहें तो हमें टिकटॉक पर देख सकते हैं और अपने डेडिकेशंस भेज सकते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: दिन के 1:10 हुए हैं। आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रोग्राम हमारा है सुहाना सफर और ये प्रोग्राम आप सुन रही हैं रेडियो मनोरंजन RM3 पर। तो चलिए हमारे जो दोस्त हैं आशा लखनऊ जी, आपका वेलकम करते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे गीतों की भी फरमाइश आई है। ऐसा करते हैं, नोट कर लेते हैं ये सारे गाने। तरुण, आपने जो गाना मांगा है हम थोड़ी देर में चलाएंगे। और शशिखा रामलोल का स्वागत है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए। मलेशिया में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनका भी वेलकम करते हैं। और साथ में यहाँ पर कहते हैं अरुणा ईरानी के स्टाइल में डांस करूँ कि चलिए साथ में करते हैं। यहाँ पर फिया का मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंश, आपके लिए नेक्स्ट गाना होगा, गाना आपकी दादी के लिए रहेगा। और साथ में यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं रोशन सिपोल के लिए, शारदा लखनऊ के लिए। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और कहते हैं कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, कोई भी रोमांटिक गाना उनके लिए। ये है कौन, रॉबर्ट की तरफ से। रॉबर्ट ये कौन है। सुनील हमारे साथ हैं, कल्याणी हरी हमारे साथ हैं। नमस्कार नासिर, सलाम जी, कैसे हैं आप। पुराने गाने आपको पसंद है, आशा जी की आवाज़ में गाना सुनना है, तो चलिए आशा जी की आवाज़ में आपको गाना सुनाएंगे। नेक्स्ट गाना उन्हीं की आवाज़ में है। वर्षा को हम कहेंगे स्वागत है। सिमी जो कि आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, अच्छा कल उनका बर्थडे था, क्षमा, ठीक है। तो सिमी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। नीतीश बुलाकी, आपका हम स्वागत करते हैं। और साथ में यहाँ पर कतीबा मंगर हमारे साथ हैं, कैसे हैं जी, सलाम, आपका भी हम वेलकम करते हैं। यादों की बारात, यादों की बारात नेक्स्ट गाना होगा। और येशुआ, हेलो सुल्ताना खंदाई, नमस्ते जिमी, वेलकम, स्वागत है आपका। एंड साथ में यहाँ पर वेलकम करते हैं राकेश का भी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लक्ष्मण, आपका स्वागत करते हैं। मनीता जी, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। रीना जी, आपकी बेटी रूही, हस्बैंड अविनाश के लिए गाना होगा।
2: RM3 Radio.

प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अब कैसे हो जाता है ये मुझे पता है, जैसे ही जैसे आपको हमारे गीतों से प्यार हो जाता है और आपको हमारे गाने, हमारा प्रोग्राम सब इतना पसंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि एक पल की भी दूरी अच्छी नहीं लगती। हम रोज़ वेट करते हैं कब 12 बजेंगे, कब हम आएंगे, कब हम मिलेंगे, कब हमारी बातें होंगी, ऐसा होता है ना। आज लड़ेंगे हम, आज बात करेंगे हम, आज दिल भारी है, कुछ दिल की बात करेंगे हम, ऐसा होता है। तो ये होती है हमारी छोटी सी फैमिली जो कि है रेडियो मनोरंजन की फैमिली। चले तरुण, आपने कहा कि हम आपसे प्यार इसीलिए करते हैं कि आप अपने वादे निभाती हैं, थैंक यू सो मच। समीर कैसे हो, दिनेश गोपी हाय, स्वागत है आपका यहाँ पर। हमारे साथ गुडलैंड से हैं पिंकी, सुदेश, स्वीटी, साइलेश एंड श्री। ओके, साथ में यहाँ पर हमारे हैं रीना, मनीता जी क्या बात है, गीता जी बड़ी मूड में आप। नेक्स्ट गाना आपकी बेटी विदुषा सुजन के लिए और ये है गीता फ्रॉम ट्रियोली। ओके, गाना हमारा होगा आपके लिए लवना, कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नलनी ननकू नमस्ते, हाय रिद्धि कैसी हो आप। माया रामदूस जी बहुत सारा प्यार है आपके लिए। अजय लक्ष्मण जी स्वागत है आपका। और यहाँ पर वैदेही भी आ गई हैं, आरती सदा सिंह, रेशान एंड साथ में हैं और भी बहुत सारे दोस्त, रेशमा राम की सुन, सब के मैसेजेस आए हैं यहाँ पर टिकटॉक पे, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिता पेरतोब हैं एंड शिरीन राम जोन भी हैं और यहाँ पर काशिफ हैं फ्रॉम नेदरलैंड्स हाय। और हमारे साथ हैं विनीता, उनके हस्बैंड विनन के लिए गाना होगा। वहीं पे ओरो एंड फॉर असलम अभी गांगोप के कावाश में भी सब काम कर रहे हैं तो उनके लिए गाना होगा। अली समीर थैंक यू सो मच। और काम चल रहा है, नितिश की तरफ से गाना होगा उनके लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं राज सिंह दुखवा, मौदाल बे, अनीता राय फ्रॉम मलेशिया हाय। आजकल मलेशिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, है ना। हेलो मीरा, हेलो अनुराधा, आरती, दीनो, नीन, रुमिता, देविना कहती हैं लोधर फैमिली के लिए गाना हो जाए। संजय बुधवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी पेश है प्रोग्राम का हमारा अगला गाना। और आरती जी कहते हैं मेरे हस्बैंड स्वराज के लिए गाना ये रहा। और ये गाना निष्ठा से, निष्ठा के लिए होगा, लालमाटी से हैं और अभी गैराज में काम चल रहा है तो अभी थोड़ी बिजी हैं लेकिन सुनती रहती हैं। सो निष्ठा, दिस वन गोज़ फॉर यू, थैंक यू।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, सुहाना सफ़र में अभी हम अगला गाना जो है चला रहे हैं शीला बाबूराम के लिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है सीता, उनके पति सूरज, यश, हंस, रामधुनी, बधाई हीरो और सुमारू फैमिली के लिए। सचिता, राहुल यादव, केशा फ्रांस में, किरण कतोना, विमी, मीला रामा, लैला मरुरन और शमीला हमारे साथ हैं, और साथ में है वरुणा घबरन जो कि साथ दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दैनी जगरू हमारे साथ हैं, यानी कि कैनाडा से योगेश, श्वेता एंड मिश्ती, हाई वेलकम। एंड रानी आपके लिए गाना होगा, आपके सभी फ्रेंड्स के लिए जो अब्रॉड में हैं।
2: तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

चलिए जी, यहाँ पर माधुरी जी का गाना आ गया. उन्होंने फरमाइश की थी. स्विनल का हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में. साथ में मरियम, वी हैव साइमन जो ही स्विनल, देव सिंह जय, सूरज सजादा एंड फातिमा. 7 दिन के लिए थैंक यू सो मच. चलिए अगला गाना हो जाए आपके नाम.

सुहाना सफर सुहाना सफर। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए जो आशियाना बना के रखा है, इसमें तो आपका स्वागत करने के लिए हम कब से बैठे हैं, कब से कह रहे हैं कि कहीं मत जाना है, यहीं पे हमारे साथ होना है। और आपको पता नहीं कहां पे जाना, कहां पे उड़ना है, लेकिन उड़ना है तो यहीं पर ही लैंड करना है। ठीक है जी, ये है आपका रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ वेदिता। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो रोए ना, लेकिन फरमाइश गाने जब आ जाते हैं ना, और वो जब हमसे लड़ने लगते हैं, आपने तो मेरा गाने नहीं चला, मेरा गाना नहीं चला, गाना चलाते हैं, फिर उसके बाद 10 लोग कहते हैं इस गाने को सुनकर रोना आ गया, इसलिए तो हम नहीं चलाते ऐसे गाने। लेकिन खैर क्या करें, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाना होगा आशा के लिए, अनिल के लिए, रॉबी फ्रॉम सुरीनाम, थैंक यू सो मच, मेरी म्यूज़िक क्लब थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े हैं। एंड नेक्स्ट गाना होगा फॉर माई ब्यूटीफुल बेटी आरोही कालीचंद, जिनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बच्चा। चलो जी यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा दीप्ति जी, हाँ जी दीप्ति जी कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम वी विल क्राई बट नाउ आई विल से आई हैव टू गो, लव यू, थैंक यू। अच्छा कहती है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो रोएंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम मुझे एक और गाना लगाना पड़ेगा आपको रुलाने के लिए। अभी वो हंस के चली गई, अच्छी बात है, कम से कम हंसी तो सही, हंसी तो फंसी। नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए, वैसे गाने की फरमाइश तो बहुत सारे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसा करती हूँ फिलहाल ये गाना चलाते हैं जिसकी फरमाइश आई थी, और आरती फिल्म के गाने की फरमाइश आई थी, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारी, आई डोंट नो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लिरिक्स याद नहीं है सॉरी। किसने मांगा था गाना,

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: भाई यहाँ पर सभी नए गाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन हम नए गाने नहीं चलाते, हमारे यहाँ पुराने गाने होते हैं। 70s 80s के एक दो गाने चला देते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जितने भी मिथुन गा के फैंस हैं उनके लिए होगा। पपीदा के फैन, लता जी के फैन, और साथ में ये गाना मणिप्रिया, दीपक बिहारी और सुबी के नाम डेडिकेट करते हैं। एंड हमारे एक बहुत ही प्यारे से अच्छे से दोस्त हैं जो कि क्यूपिप में इस समय हमें सुन रहे हैं। चलिए संजय के नाम डेडिकेट करते हैं ये खूबसूरत सा गाना। अभी अभी जॉगिंग करके घर वापस आए हैं, कहते हैं हम आपको सुन रहे हैं। जी मुझे पता है आप सुन रहे हैं। सो दिस वन गोज स्पेशली फॉर यू।

दिल था अकेला अकेला, लेकिन साथी तो मिल गया। अब साथी मिल गया तो क्या करे, अपना कौंधे पे चिपका दे। चलिए, हमारे जाने का समय हो गया है। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल 12 बजे। चलते चलते यहाँ पर मायरा, संजीव, अहनीश सबका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और जाने का समय हो गया तो हिमेश जी हमारे साथ है, क्या बात है। नमस्ते ए राधा स्वामी, आपका भी वेलकम करती हूँ मैं प्रोग्राम में। चलिए दीपक जी, अब कल मिलते हैं। अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सॉन्ग। नाजियाना, आपका भी हम स्वागत करते हैं। चलिए मिलते हैं कल।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय दिन के 2:01 हुआ है।
4: ये सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
5: नमस्कार आदाब। रियों बेल के एक बंगले में घुसबर की आदसूनी कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज्यादा कोकेन को जब्त किया और कल इस बंगले की तलाशी ली गई, जिसकी मालकिन जयंती देवी जगहू है, वो फिनिक्स से है और पुर्तगाल में रहती हैं। 40 वर्षीय ये महिला मोर्शस में है और उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थायी आरोप लगाया गया। एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया। कोकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपए की बताई जाती है। सार्वजनिक संस्थाओं में वित्तीय जुर्मों के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन अपना संघर्ष और ठोस कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स एक्ट 2023 के नए नियमों के हवाले से एक रिपोर्ट में FCC ने सार्वजनिक इदारों से स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं के लीफलेट जारी करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्तलिफ श्रमिक संघ एक नर्स पर की गई हिंसा के बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि वो देश के इलाकाई अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करे। विदेश में अमेरिकी सीनेट में ईरान में अमेरिकी ताकतों को निकालने के लिए एक मसौदे को ठुकराया गया। कई हफ्तों में डेमोक्रेट ने दूसरे मसौदे भी प्रस्तावित किए थे, लेकिन 49 वोट इनके पक्ष में थे और 50 खिलाफ। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को जंग छेड़ने का हक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रोहतांग में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड जनाब महमूद फारूक

0: महमूद अली जनाब महमूद फारूक महमूद अली जो फारूक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज तीन बजे इनके बेटे इम्तियाज़ महमूद अली के घर रॉयल रोड कौंजाबले से उठाकर दफनाने के लिए कौंजाबले का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम, और जहाँ पे हम बात करते हैं नाटक के बारे में, रंगमंच के बारे में, अभिनय के बारे में, कहानी के बारे में, पात्र के बारे में, और कहानी के पीछे कहानी क्या है, सीख क्या है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि मॉरिशस में बहुत सारे नाटककार हैं और अभिनेता भी है, जहाँ पे वे लोग नाटक प्रस्तुत करते हैं, नाटक के जरिए जो भी कुछ घटता है समाज में उन सब को साहित्य के माध्यम से रंगमंच पर उतार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, आपको एक बात बताएं कि रंगमंच में वो शक्ति है कि परिवार में या फिर समाज में परिवर्तन लाना, उनका काम ही है कि लोगों को सच्चाई दिखाना, बाकी लोग अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। तो नाटक में, नाट्य में, रंगमंच में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। आइए उसी शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ आई हुई है मनीलाल, डॉक्टर, SSS स्टेट सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका और छात्राएं दोनों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ है बहन जी बबीता बालजावन जी और घनिष्ठा देवी शिवालक जी, दोनों का हम स्वागत करें। नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते रितेश जी।
1: नमस्ते घनिष्ठा जी।
3: गुरुजी,
1: आप लोग कैसे हैं?
2: ठीक है,
3: मैं भी ठीक हूँ।
1: बहुत बढ़िया। अरे बिना सवाल किए हुए आपने पूछ लिया, बहुत ही अच्छा। अभी बहुत कुछ बातें होने वाली है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के नाटक के बारे में। सबसे पहले बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटारिएट विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित जो नाटक कंपटीशन में आप लोगों ने भाग लिया, आप लोग द्वितीय स्थान प्राप्त हुए आप लोगों, बहुत ही अच्छा। तो थोड़े से बहन जी आपके नाटक के बारे में हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपके ही नाटक का एक छोटा सा अंश आपको और सभी हमारे देखने और सुनने वालों को हम दिखाना और सुनाना चाहेंगे इस वीडियो में।

0: वर्षा बेटी, तुम हमेशा मोबाइल में अंग्रेजी ही क्यों पढ़ती रहती हो? जानवी की तरह हिंदी में भी कुछ पढ़ लिया करो।
1: आजकल सब कुछ अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, करियर के लिए वही जरूरी है, हिंदी से क्या होगा?
0: बेटी, हमारे पूर्वज भारत से मॉरिशस आए थे, तब उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हिंदी और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगर हम ही हिंदी बोलना छोड़ देंगे तो हमारी पहचान क्या रहेगी?
2: दादी, आप हमें अपने बचपन की कोई कहानी सुनाइए ना, जब आप हिंदी सीखती थी।
0: हमारे समय में स्कूल कम हुआ करते थे, हम घर में ही रामायण, भजन और कविताएं सुनकर हिंदी सीखते थे।
1: शायद मैंने हिंदी के महत्व को ठीक से समझा ही नहीं।

0: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: आप लोगों को एक सच्ची बात बताएं कि बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे नौजवान लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस में हिंदी की प्रशंसा करते हैं, हिंदी को बढ़ावा देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहन जी, इस नाटक के लिए सबसे पहले बधाई, और नाटक के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप लोगों ने कैसे विचार किया कि चलिए इस कॉम्पिटिशन में हम भाग लें।
2: पहले तो जब हमें माधुरी जी ने फ़ोन किया कि आप लोग इस कंपटीशन में भाग लें, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ दिखा सकते कि हमारी जो छात्राएं हैं मनीला डॉक्टर एसएसएस की छात्राएं कुछ कर सकते हैं,
1: हम भी किसी से कम नहीं।
2: हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तब मैंने इस पर चिंतन मनन किया कि कहाँ से लूँ, हिंदी भाषा को नए युग में हमें बताना है तो सिर्फ सीधा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारी पूर्वजों की देन है, तो हमारे पूर्वज को डालने के लिए मैंने दादी को लिया।
1: अच्छा।
2: दादी के माध्यम से मैंने उनके जो विचार हैं, जो पूर्वजों की जो भाषा है, जो किस प्रकार से वे लोग सीखते थे, रामायण के माध्यम से, भजन कीर्तन कविताओं के माध्यम से, उसको मैंने दर्शाया ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से हिंदी भाषा सीखी, फिर उसको नए युग तक किस प्रकार से पहुंचाया, क्योंकि जो यह पारंपरिक भाषा है, सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, ये महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषा है। इस नए युग में, इस आधुनिक युग में युवाओं को बताना चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है, आजकल तो अंग्रेजी और सोशल मीडिया की भाषा ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं यह दर्शाना चाहती थी कि हिंदी भाषा को भी सम्मान दें,
1: हिंदी भी किसी से कम नहीं,
2: और उसको भूलना नहीं चाहिए, और इसको आज के युग में, प्रौद्योगिकी के युग में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है।
1: बहुत ही सुंदर। तो एक तो एक तरफ से तो आप लोगों ने नाटक और अभिनय के जरिए हिंदी को बढ़ावा दिया है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि हिंदी संप्रेषण की भाषा बन गई, संपर्क की भाषा बन गई है, और टेक्नोलॉजी की भी भाषा बन गई है। बहुत ही सुंदर। अभी आपने कहा बहन जी कि आपके नाटक का शीर्षक है नए युग में हिंदी भाषा, लेकिन आपने पूर्वजों की भाषा, पूर्वजों की संस्कृति के साथ जोड़ा है। घनिष्ठा हमारे साथ हैं, एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपसे हम करना चाहेंगे। आप नए युग की एक लड़की है, नौजवान है, तो आपने इस नाटक में भाग लेते समय आपने अपने पूर्वजों के बारे में क्या क्या सीखा?
3: तो सबसे पहले मैंने सीखा कि हमारे पूर्वज जब हम छोटे थे बैठकर जाते थे, बहन जी सब, दादी दादा हमें हिंदी सिखाते थे, हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, ये मेरा कहना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ क्रियोल में ही बात क्यों कर रहे, हिंदी तो हमारी पहचान है, ये हमारी धर्म है। मैंने बोला हाँ, अगर मैं जी ने मुझे चुना है तो मैं ज़रूर करूँगी। शुरू शुरू में तो थोड़ा डर लगता है, पर आगे में तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ा हंसी मजाक।
1: यहाँ पे एक बात मैं उल्लेखनीय करना चाहूँगा कि देखिए, मॉरिशस जो है एक बहुभाषी देश है, जहाँ पे अनेक भाषाएं होती है, क्रियोल, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब, लेकिन इन सभी भाषाओं के साथ साथ अगर हम हिंदी भी सीखें तो मतलब जैसे कहते हैं कि पांचों उंगली घी में पांचों उंगली में, और दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं इन सभी भाषाओं का प्रयोग करते हुए। आगे और बताइए।
3: तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने भाग लिया। थोड़ा थोड़ा डायलॉग तो याद करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने पेपर पर कुछ नहीं देखा। बहन जी ने माध्यम दिखाया, रास्ता दिखाया, कैसा चलना चाहिए, कैसा एक्सप्रेशन, ये सब हमने एक साथ काम किया, तो बहुत अच्छा लगा।
1: और आपने अपने पूर्वजों के, जैसे आपने कहा कि हिंदी जो है हमको अपनी जड़ से जोड़ती है, इसका मतलब क्या है?
3: जैसे पुराने ज़माने में जो भी था, अभी बहुत लोग नहीं जानते, कहानियाँ जैसे रामायण को ही ले लेते हैं, बहुत बच्चे आजकल ये सब नहीं देखते, तो जब हम ये देखते हैं तो दूसरों को भी सिखाते हैं, तो हम अपने जड़ों से जोड़ते हैं, हिंदी के साथ जोड़ते हैं।

0: करते हैं।
1: आपने क्या सीखा पुराने जमाने की बातें को लेकर, मतलब आप क्या जानते हैं, आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे।
0: जैसे पुराने जमाने में हिंदी जैसे स्कूल ही नहीं होते थे तो लोग बच्चे कैसे पढ़ते थे, तो जो हमारे रिलीजियस बुक में लिखा है वो हमारे दादी बहन जी जो भी थे पुराने हमारे पूर्वज हम कह सकते हैं, वो हमें सिखाती थी कैसे जीवन जीना है, कैसे ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए जीवन में, ये सब।
1: बहुत सुंदर, क्योंकि आप लोग मनीला डॉक्टर स्थित सेकेंडरी स्कूल से है तो मनीला डॉक्टर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इतिहास में, इन सब के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, नए युग में हिंदी भाषा, तो जैसे कि आपको विचार मिल गया कि हाँ भाग लेना चाहिए, बच्चों को आपने इकट्ठा किया, बहन जी आप एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बच्चे लोगों को इकट्ठा करने में कोई चुनौती आई है, क्योंकि आजकल के नौजवान लोग कहते हैं कि मैं हिंदी में नाटक करूँ या फिर हिंदी में बात करूँ, मतलब उससे दूर भागती है, आपने इस चुनौतियों का सामना कैसे किया?
2: जब मैंने इसकी रचना की तो मैंने किसी से नहीं पूछा, ये मेरी छात्राएं ग्रेड 13 की छात्राएं हैं, मैंने किसी से नहीं पूछा, बस इन लोगों का नाम भी वही रखा और मैंने इतने सालों से इन लोगों के साथ काम किया तो मुझे पता चल गया ये कैसे हैं, तो मैंने लिख दिया कि ये गौरीशा ये करेगी, घनिष्ठा ये करेगी, ये और मैंने ये करके दिया। उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैंने कहा ये मैंने कर दिया है, आप देखे तो कर सकते हैं, तो बस किसी ने इनकार नहीं किया, सभी ने हाँ कहा। शुरू में एक और छात्र ये नहीं करने वाली थी लेकिन इसका सौभाग्य है कि इसने भाग लिया। शुरू में दो सप्ताह बाद देख करे कि नहीं करेगी अध्यापिका का जो रोल है, तो मैंने कहा गुरुजी है, मैंने कहा क्या करें, तो हमने सोचा इसको क्यों ना लूं, और इसने बस जल्दी से ही रट लिया और इतना अच्छा किया तो मैं तो दंग रह गई।
1: इसने अध्यापिका का रोल निभाया,
2: अध्यापिका का रोल किया बहुत अच्छे से।
1: अच्छा घनिष्ठा जी, आप एक छात्रा है, अध्यापिका का रोल निभाने में कोई तकलीफ कठिनाइयां?
0: इतना कठिनाइयां नहीं, क्योंकि जब हम बहन जी हमें सिखाती थी तो मैंने बहन जी को ही अपना रोल मान लिया।
1: बहन जी को आपने कॉपी किया?
0: हाँ, थोड़ा थोड़ा बहन जी जैसे हमें सिखाती थी ऐसे करो, शाम पट पर ये लिखो, बच्चों के साथ ऐसे करो, तो मैंने बहन जी को कॉपी कर दिया।
1: तो लाइंस कंठस्थ है?
0: थोड़ा थोड़ा, लेकिन
1: थोड़ा बहुत याद है।
0: हाँ मुझे याद है।
1: अब बोल पाएंगे एक लाइन?
0: सोच कभी पुरानी नहीं हो सकती, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है।
1: अच्छा फिर से कट रीटेक।
0: यस, भाषा कभी पुरानी नहीं हो सकती, सोच पुरानी हो सकती है।
1: बहुत ही सुंदर, भाषा कभी पुरानी नहीं हो सकती, बल्कि सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन सोच के साथ साथ नए युग के साथ साथ भाषा को भी आगे लेके जाना है। जब आप लोग दूसरे स्थान पर आए तो आपका जो रिएक्शन, आपकी जो प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे।
0: उस समय तो हम लोगों को पता ही नहीं था, जब वहाँ गई तो उन लोगों ने बोला सीट ऑन सेकंड सीट, तो तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम सब बहुत खुश हो गए जब स्टेज पर मानीलाल डॉक्टर बहन जी का नाम लिया, हम सभी सहेलियों का नाम लिया, तो वहाँ ऊपर गए, बहुत हंसी आई, हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि और स्कूल भी थे, क्योंकि मे भी उन लोगों ने भी बहुत हॉट वर्क किया, परंतु इस सेकंड पर नहीं आया, पर मैं बहुत खुश हूँ।
1: जब यही बात आपने अपने घर वालों से कहा, उन लोगों ने क्या कहा?
0: उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती।
1: अरे वाह।
0: उन लोगों को हम पर बहुत गर्व आया, बोला कि अच्छा है तुम स्कूल जाओ बहन जी के साथ, ये सब करो, अच्छे से पढ़ो, बहुत खुश थे वो लोग, क्योंकि मैं पहली हूँ कि मेरी फैमिली में ये नाटक किया।
1: मम्मी पापा नहीं करते?
0: नहीं,
1: वो घर में नाटक करते।
0: थोड़ा थोड़ा सभी लोग करते हैं नाटक अपने जीवन पर।
1: अभी वे लोग सुन रही है, अभी देख रहे हैं?
0: हाँ देख रहे हैं अभी।
1: तो मम्मी पापा जी, घनिष्ठा कह रहे हैं कि आप लोग घर पे नाटक करते।

0: करते हैं। बहन जी एक बात मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँगा, आपको वैसे शास्त्र में लिखते हैं और लिखा जाता है, विद्वानों का ये भी कहना है कि अगर हम भाषा को आगे बढ़ाना है तो उसके साथ उसकी जो विधाएं हैं, खासतौर पे नाटक जो है, नाटक के जरिए अगर हम भाषा को आगे बढ़ाए तो बच्चे लोग ज्यादा बहुत ही जल्द सीख लेते हैं। हाँ जी,
1: हाँ, नाटक के माध्यम से सीख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको रटना पड़ता है, तो हमें इन लोगों की जो प्रतिभा है मुझे ही नहीं पता था, मैं ही दंग रह गई कि सभी लोगों ने रटा। और हम ये व्हाट्सएप पर रोज करते थे, व्हाट्सएप पर रटते थे, इन लोगों को हाव भाव सिखाती रहती थी, और जो है ये भाषा के यानी भाषा जो है इसका जो उच्चारण है उस पर ध्यान दिया, किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। और नाटक के माध्यम से जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं क्योंकि अभिनय कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा यानी लाभदायक भी है और प्रभावशाली भी है।
0: तो आपने जब रिहर्सल चल रहा था, आपने लोगों के उच्चारण को देखा,
1: उच्चारण हाव भाव भंगिमाओं,
0: हाँ, अभिनय को देखा, और मैंने देखा कि काफी मूवमेंट्स थे। कैमरा किसने लीक किया?
1: मैंने खुद किया।
0: अरे वाह।
1: मैंने
0: शूटिंग किससे हुई? कैमरा के साथ, मोबाइल फोन के साथ?
1: आईफोन
0: के साथ,
1: मेरा खुद का आईफोन के साथ मैंने किया।
0: और अच्छी इमेज आए हमने देखा, और साउंड भी सब मोबाइल फोन से ही, बहुत ही सुंदर। तो और छात्राएं आई हमने डॉक्टर कॉलेज से, तो आइए एक बार फिर से नए युग में हिंदी भाषा नामक नाटक का एक दूसरा अंश हम साथ में देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी छात्रा से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। आइए साथ में इस वीडियो में देखते हैं।
2: सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावये। ओम शांति शांति शांति।
3: आज का हमारा विषय है नए युग में हिंदी का महत्व। बताओ क्या हिंदी के बरतर की भाषा है?
4: नहीं बहन जी, हिंदी अब इंटरनेट, टीवी और फिल्मों में भी लोकप्रिय है।
5: बहन जी, लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में है, क्या हिंदी आधुनिक युग में पीछे नहीं रह जाएगी?
6: नहीं गौरीशा, आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और अन्य देशों में भी बोली जाती है।
7: ओ दीपशिका, बहन जी, सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री तेजी से बढ़ रही है।
8: बहुत अच्छा दीपशिका, और तो और मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय जैसे संस्थान हिंदी के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
9: बोलो गिरिजा।
10: बहन जी, मेरी छोटी बहन जानवी बता रही थी कि उसके स्कूल में तो हिंदी भाषण प्रतियोगिता और नाटक भी होते हैं।
11: बिल्कुल, हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और साथ ही आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है।
12: याद रखो, भाषा कभी पुरानी नहीं होती, सोच पुरानी हो सकती है।
13: हिंदी पत्रकारिता, अनुवाद, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अवसर है।
14: अगर हम अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तभी दुनिया भी उसका सम्मान करेगी।
15: मुझे खुशी है कि तुम सब हिंदी के महत्व को समझ रहे हो।
16: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला,
0: बहुत ही सुंदर हम देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि किस तरह से बच्चे लोग हिंदी का सम्मान करते हुए नाटक का

0: बढ़ावा दे रहे हैं, नाटक के जरिए हिंदी का महत्व बता रहे हैं समाज को, दुनिया को। और बहन जी, ये आप लोगों ने अपलोड किया है सोशल मीडिया पर?
1: No.
0: इस वीडियो को
1: ना
0: कर लीजिए। इंतजार किस बात की।

0: अदय के साथ साथ आई है दीपशिका निर्मल जी। नमस्ते आपको।
1: नमस्ते।
0: मैंने आपको देखा है वीडियो में, आप अच्छी बात करती है। आपने क्या कहा, हिंदी का सम्मान करना चाहिए, क्या कहा आपने एक बार फिर से बताइए।
1: हमें अगर हम हिंदी का सम्मान करेंगे तभी हिंदी भी
0: हमारा सम्मान
1: करेगी।
0: हाँ, बहुत ही सुंदर। भाषा का सम्मान करेंगे तो भाषा भी हमारा सम्मान करेगी। आपने नाटक में भाग लिया, दूसरे स्थान प्राप्त हुए, आपको कैसा लगा?
1: मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई, मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत
0: गर्व महसूस
1: की।
0: अभी माँ बाप सुन रहे हैं आपको?
1: जी।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर। तो इस नाटक के जरिए एक कहानी है, कहानी के पीछे एक सीख है, आपसे हम जानना चाहेंगे आपने क्या सीखा।
1: पहले तो मुझे पता चला कि हिंदी का महत्व क्या है।
0: फिर उसके बाद हिंदी करते करते हिंदी को लोगों तक भी पहुंचाना है। बहन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब बच्चे लोगों के साथ आप बात काम कर रहे हैं, तो ये लोग नौजवान हैं, शायद ही उन लोगों ने उन लोगों को मंच प्रदान मिला होगा, तो कौन सी कठिनाई, कौन सी चुनौतियों का सामना आप लोगों ने किया, क्योंकि नौजवान है, और एक दूसरी बात यह है कि उन लोगों के लिए नाटक एक नई विधा है।
2: वैसे तो इन लोगों ने अच्छे से ही नाटक का जो संवाद है रट लिया था, लेकिन जो चुनौती थी इन लोगों की पढ़ाई और रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में,
0: क्योंकि अन्य विषय भी है।
2: अन्य विषय है, उस समय नारी दिवस थी, फिर स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, इसके बाद लघु परीक्षा। अब इन लोगों को कक्षा से निकालना बहुत कठिन था, तो मुझे समय का प्रबंधन करना पड़ा, इन यानी पढ़ाई के बीच, रिहर्सल के बीच और रिकॉर्डिंग के बीच। कुछ छात्रों ने लघु परीक्षा देकर आकर फिर रिकॉर्डिंग किया, डेडलाइन थी 16 मार्च, तो ये सब इन चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा,
0: लेकिन पूरा
2: लेकिन सफल रहे। बच्चों ने सहयोग दिया, उन लोगों की जो लाइन थी वो लोगों ने आकर ठीक से किया। मैं ही सोच रही थी परीक्षा के बाद लघु परीक्षा दे देकर आ रही हैं ये लड़कियां, लेकिन बहुत अच्छे से किया।
0: जैसे आपने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने बनाया।
2: हाँ, पहले तो, दिन से ही बना दिया
0: पहले
2: था।
0: दिन से। तो स्कूल के बाद भी रिहर्सल चलती थी?
2: स्कूल के बाद ही हमने सब काम किया। 8 बजे से 8:30 बजे रोज मिलती थी इन लोगों के साथ
0: ऑनलाइन। क्या बात है,
2: सोशल मीडिया का प्रयोग तो करना चाहिए ना। तो जो कंठस्थ करना था, ये सब जिस प्रकार से बोलना था, तो मैंने सब व्हाट्सएप के माध्यम से ही किया, क्योंकि स्कूल में समय नहीं मिलता, दूसरे टीचर दूसरे अध्यापक उनकी कक्षाएं नहीं देंगी, तो मुझे ये सब करना पड़ा, तब ये सफल हो पाया।
0: दीपशिका, आप एक अन्य विषय भी है, अन्य लैंग्वेज भाषाएं भी हैं, उनमें से एक एग्जाम्स, जैसे बेंजी ने कहा मातृ दिवस, मदर्स डे, उसके साथ और
2: नारी दिवस
0: वुमेन्स डे, तो वुमेन्स डे के साथ साथ और बहुत सारे एक्टिविटीज थी, उनमें से समय निकाल के आप लोगों के एग्जाम से या फिर टेस्ट से समय निकाल के, पढ़ाई से समय निकाल के रिहर्सल को देना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कैसे किया?
1: हम ब्रेक टाइम में मिलते थे, रोज एक कॉपी होती थी हमारे पास, हम उसे रोज पढ़ते थे, रोज अभ्यास करते थे। बहुत मुश्किल था, हमने बहुत मेहनत की और इसका हमें फल भी मिला।
0: बहुत ही सुंदर, फल भी मिला और अच्छा भी लगा।
1: हाँ।
0: और आपके माँ बाप गर्व महसूस करते हैं। हाँ। आपने पहले कभी ये नाटक में भाग लिया?
1: नहीं, पहली बार है मेरा।
0: पहली बार है, तो पहली बार मतलब पहला एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? डिफिकल्ट है?
1: मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत मेहनत की,
0: फिर मौका मिला, फिर आपने अपने अपनी अपना टैलेंट, अपनी कला आपने दिखाई। बहुत ही सुंदर। आप हिंदी मूवीज देखते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और आपका

0: जो फेवरेट एक्ट्रेस है कौन है?
1: मुझे उसका नाम तो नहीं पता पर अच्छा, बहुत सुंदर है।
0: बहुत सुंदर है। हाँ। किस मूवी में काम करती है?
1: हिंदी मूवी में।
0: हिंदी मूवी? हाँ बताइए किस मूवी में। नाम नहीं मालूम? कोई नहीं। बात नहीं, एक्ट्रेस का नाम नहीं मालूम हिंदी के, लेकिन आप उसको पसंद करती है।
1: हाँ।
0: बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छा। तो बेंजीज के साथ साथ ये तो रहा कि पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव बच्चों के साथ नाटक के रूप में। अगर बाद में अन्य मौका मिले, अवसर मिले, तो आप बच्चे लोग हिचकिचाएंगे या फिर आप लोग फिर से भाग लेना चाहेंगे इसके बारे में?
2: कर सकते हैं,
0: कर सकते हैं,
2: कर सकते हैं। एक से प्रयास किया तो आगे भी और तो बेहतर कर सकते हैं।
0: बहुत ही सुंदर। तो चलिए आइए, नए युग में हिंदी भाषा इसका दूसरा भाग हम साथ में, तीसरा भाग साथ मिलकर इस वीडियो में देखते हैं।
3: स्कूल में मेरी अध्यापिका ने हिंदी के महत्व के बारे में बहुत कुछ समझाया। आज मुझे समझ में आया कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। मैं तो यही चाहती थी कि तुम लोग समझो। गौरीशा, क्यों ना हम सोशल मीडिया पर हिंदी में वीडियो बनाए मॉरिशस की संस्कृति पर?
4: हाँ दीदी, हम अपने त्योहार, संगीत और परंपराओं के बारे में भी बता सकते हैं।
3: हाँ, मैं दिखाऊंगी कि हिंदी इस नए युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।
4: मुझे तुम सब पर गर्व है।
5: हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी पहचान है। आधुनिक युग में भी हिंदी का सम्मान करें और इसे आगे बढ़ाएं।
6: नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
0: सुंदर, नए युग में हिंदी भाषा इसकी प्रस्तुति की है मनीलाल डॉक्टर, स्टेट सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका और छात्रों द्वारा। हमारे साथ है गौरीशा देवी नंदू और साथ ही साथ बेंजी बबीता बालजावन भी हमारे साथ है। तो गौरीशा, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि हिंदी का मान सम्मान करना चाहिए, हिंदी आपके लिए कैसी भाषा है?
7: हिंदी मेरे लिए मतलब ये मेरी पूर्वजों से जुड़ी हुई है, तो ये मेरे लिए एक काफ़ी जो है, जो ये मेरे लिए एक मेरी मातृभाषा है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और ये हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और नई पीढ़ी को भी हमें दिखाना चाहिए कि हमें कि हिंदी एक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उन लोगों की जो नई कौशल, वो नई कौशल पाते हैं हिंदी सीखने से। और
0: तो हाँ, इसके साथ साथ आपने कहा कि हिंदी का सम्मान करना चाहिए, आपसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं पूछ लूँ, आप हिंदी का सम्मान कैसे करते?
7: मैं हिंदी पुस्तक पढ़ती हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। मेरी बहन जी हमेशा मुझे हिंदी का महत्व सिखाती हैं कक्षा पर। वो कहती है कि हिंदी हमारे लिए, हमारी भविष्य को उज्जवल बनाती है हिंदी। तो सीखने से हमें ये हमारी आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। तो हिंदी सीखना तो अच्छी बात होती है नए युग के लिए।
0: और हिंदी तो आप कॉलेज में सीखते हैं अन्य भाषाओं के साथ साथ, क्या हिंदी उपस्थित है घर परिवार के बीच में भी?
7: हाँ, ये उपस्थित है। फिल्में देखते थे तो हम हिंदी घर में, हम हिंदी बात करते थे, अपनी दादी के साथ हिंदी बात करते थे, वो भोजपुरी में भी बात करती हैं। तो
0: आप भोजपुरी जानते हैं?
7: थोड़ी थोड़ी इतना ज़्यादा नहीं जानती, बट हिंदी

0: जानती हूँ, अभी मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ हिंदी में बात करते हुए।
1: जानते हैं जानते हैं। तो चलिए भैया, लगे हाथ हिंदी की हिंदी की बहन भोजपुरी भी है, तो हमने के संगे गौरीशा देवी नंदू भी हवन, तू भोजपुरी जाने ला
0: थोड़ी
1: बहुत बहुत ही अच्छा भैया, लगे हाथ हम पूछ लेते हैं, क्योंकि हिंदी और भोजपुरी दोनों बहने भाषा है और साथ साथ चलती है। तो बहन जी, हिंदी भाषा और तकनीकी आधुनिक इक्विपमेंट्स का आपने प्रयोग किया भरपूर, टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं, इसके बारे में बताइए।
2: आज करते चैट जीपीटी है,
1: एआई का जमाना है,
2: एआई का जमाना है, तो अब इसका प्रयोग तो ज्यादा करते हैं। और सचमुच हिंदी में काफ़ी सामग्री मिलती है, साहित्य को लेकर, निबंध को लेकर, ये तो भविष्य बच्चों के लिए ये तरीका तो बहुत आसान है।
1: पहले तो खुद तैयारी करनी पड़ती
2: है, खुद तैयारी करनी पड़ती है, तो हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध है।
1: तो अगर सभी सामग्री उपलब्ध है और बच्चे लोगों के पास भी ये आए हैं, तो एक टूल्स की तरह है, तो हिंदी को आप कैसे सिखाते हैं?
2: बच्चे लोग इसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो अगर हम इसको इनको मार्गदर्शन करेंगे तो करेंगे, लेकिन गाइडेंस होना चाहिए। सिर्फ चैट जीपीटी से लेकर लिखना नहीं चाहिए, जो भी दिया है सभी कुछ तो यानी प्रासंगिक नहीं होता है, उसमें हमें चयन करना चाहिए कि क्या सामग्री लेना है क्या नहीं लेना है, तो इसका इस मार्गदर्शन आवश्यक।
1: ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, जो भी कुछ दिखाया जाता है सोशल मीडिया या फिर नेट में, ये जरूरी नहीं है कि सच है। तो आपको वेरीफाई करना भी पड़ता है, ना कि एआई ने हमको कुछ बता दिया हम मान ली। तो गौरीशा, आप एआई का प्रयोग किस तरह से करते हैं हिंदी को या फिर अन्य भाषा को सीखने के लिए?
0: मैं अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करती हूँ और कठिन शब्द भी ढूंढती हूँ एआई से। और कई कबार हमें निबंध बनाता नहीं आती, तो हम उसका मदद लेते हैं करने में, तो हाँ।
1: शब्दकोश महज एक शब्द बन गया है अभी।
2: नहीं तो मैं ही कहती हूँ, जाकर इंटरनेट है ना, सभी जो पासेज है उसकी हर शब्द की तैयारी कर जाओ, इंटरनेट में देखो, और सब मुझे शब्दावली चाहिए।
1: पहले हम जानते थे कि शब्दकोश इतनी भारी भारी एकदम बड़ी बड़ी, तो हम ढूंढते थे पन्ने उलाटते थे, ये यहाँ पे अच्छा ये मिल गया,
2: ख के बाद ख, ख के बाद ग, फिर ये
1: अब फिर आज तो सिर्फ टाइप कर ले, अच्छा ये मिल गया, तुरंत मिल गया, उसका अनुवाद भी मिल जाएगा।
2: हाँ, यही कहने वाले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सीख लेते हैं, फिर आसानी होती है इन लोगों को।
1: तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं एआई से?
2: हाँ होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कक्षागत कार्य करती हूँ, ताकि मोबाइल फोन ये सब इसका प्रयोग ना करें, घर पर देती हूँ तो करते हैं, लेकिन कक्षागत कार्य ज्यादा करती हूँ।
1: गौरीशा, आपने इस नाटक की तैयारी कहीं ना कहीं आपने एआई का प्रयोग किया?
0: AI का प्रयोग नहीं किया। हमने बस ऐसी
1: बहन जी तो थी साथ में AI के रूप में,
0: बहन जी तो AI। और मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब जो किरदार निभाना पड़ता है ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक दृश्य पर हमें अपना जो भावना है हमेशा हर दृश्य पर बदलना पड़ता है, तो ये काफ़ी मुश्किल है। हम फिल्मों में देखते हैं कि ये काफ़ी आसान है एक्टिंग करना, जब हमारी बारी आते हैं करने में, वास्तव में तो हमें करने से हमें कितनी कठिनाई भी मिलती है। ये सब
1: ऑडियंस में बैठकर बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज़ करना, आलोचन करना कि इसने अच्छा नहीं किया, इसने गलत किया, लेकिन मंच पर आकर या फिर माइक के सामने आकर या फिर कैमरा के सामने आकर बोलना बहुत ही कठिन होता है। अभिनय की बात कर रहे हैं तो गौरीशा आप बताइए, अभी जो आप माइक के सामने बात कर रहे हैं, कैमरा के सामने बात, कितना आसान है?
0: ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बहुत ही अलग सा अनुभव है मेरे लिए, ये पहली बार हो रही है मैं यहाँ आई हूँ, तो ये बहुत ही अलग अलग सा,
1: जैसे आप लोग

0: को पता चला कि दूसरे स्थान प्राप्त हुए, आप मतलब अब बहुत खुश हो गई है, इसके बाद काफी लोगों ने आप लोगों को कंग्रेचुलेट किया?
1: हमारी छात्र, हमारे जो दोस्त हैं और हमारे जो शिक्षक हैं, उन लोगों ने हमें बहुत बधाई दी, हमें बहुत अच्छा लगा उन, और उन लोगों ने बहुत प्रोत्साहित भी की, और मतलब कई कई प्रतियोगिताओं पर और ज़्यादा भाग ले, ताकि हम ऐसे ही अच्छा फल लाए अपने लिए, मतलब अच्छी काम करें। मैं दिल से बहन जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, तो धन्यवाद बहन जी।
0: हाँ, खड़ी होते हो के साथ साथ आप बैठी भी है
1: मंच पर
0: खड़ी है पर। तो स्कूल की ओर से, कॉलेज की ओर से, और कौन सी गतिविधियों में आपने भाग लिया है, कौन कौन से इवेंट्स आए?
1: ज़्यादातर मैंने हिंदी की प्रतियोगिता पर भाग ली है, जैसे निबंध बनाना और वही।
0: निबंध में और अभी नाटक में। भविष्य में अगर कोई ऐसा कोई मौका मिले तो आप भाग लेना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, मैं भाग लेना चाहती हूँ, और मैं अपनी जो आत्मविश्वास को और बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे निडर बनना है अपनी ज़िंदगी में, तो ये काफ़ी मदद करेगी, मेरी भविष्य में मदद करेगी।
0: आपने क्या सीखा, आप में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आए जब आपने इस नाटक में भाग लिया, और नाटक में भाग लेने के बाद आप में क्या चेंजेस आए?
1: मुझे अपने आप में आत्मविश्वास, जैसे मैंने बताया कि आत्मविश्वास थोड़ी सी बढ़ गई, और अपने दोस्तों के साथ मैं खुली से बात कर पा रही हूँ, जो मेरा जो शाइनेस है, मैं हमेशा शर्मीली टाइप्स की लड़की हूँ, तो मेरा जो थोड़ी सी शर्मीली टाइप्स वो थोड़ी सी चली गई, तो मैं बिल्कुल निडर से मैं बात कर पा रही हूँ, तो मुझे इसके लिए गर्व है, और मेरी परिवार भी उसके लिए गर्व हो चुके हैं। हाँ।
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है, लेकिन वही माध्यम के साथ साथ अगर आप अपनी प्रतिभा को मंच के जरिए लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो यही भाषा आप लोगों के लिए एक शस्त्र की तरह बन जाता है। तो अभिनय और बहन जी, नाटक से बच्चे लोगों या फिर किसी भी अभिनेता में आत्मविश्वास पैदा करता है, आपने देखा इन बच्चों में किस तरह से उन लोगों का आत्मविश्वास आपने बढ़ाया?
2: इन लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जहाँ पर लाइन नहीं आती, यानी भाव भंगिमाएँ नहीं आती थी, तो मैंने उनको बताया, खुद किया, खुद उन लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि जो हमारी जो नाटक है वो प्रभावशाली बने, और उसमें कुछ गलती ना हो, उच्चारण ये सब, तो ये सब ना हो, और स्वाभाविक भी हो।
0: बहुत ही
2: स्वाभाविक बहुत आवश्यक है, तो इस लोगों को मैंने सिखाया, मैंने खुद उन लोगों का मार्गदर्शन किया।
0: बहुत ही
2: अभिनय के,
0: बहुत ही सुंदर। और बहुत सारे प्रश्न हैं बहन जी, आप लोग साथ देते रहिए, अभी समय आ गया है थोड़ा सा पानी पीने के लिए, और आप लोग साथ देते रहिए, एक गीत हम सुनते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नृत्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: आप लोग जुड़े हुए हमारे साथ नाट्य कला कार्यक्रम में, और हमारे साथ है मिनाल डॉक्टर, SSSK की छात्राएं, और साथ ही साथ हिंदी एजुकेटर बहन जी बबीता बालजावन जी। आप लोगों ने एक नाटक में भाग लिया है जो उत्तीर्ण हुए हैं नए युग में हिंदी

0: हिंदी भाषा। बहन जी हमने वीडियो देखा, बहुत ही अच्छा लगा, काफी आपने एक घर का दृश्य और कक्षा का दृश्य आपने दिखाया। नाटक के साथ साथ एक फिल्म की तरह हमने उसको देखा है, तो इसकी एडिटिंग, साउंड प्रोडक्शन के बारे हम पूछना चाहेंगे। आपने कैसे किया, जैसे आपने कहा आपने फोन का प्रयोग किया, एडिटिंग कैसे हुई और साउंड वगैरह आपने इसके ऊपर किस तरह से काम किया?
1: इसको करने के लिए मैंने घनिष्ठा की बहन की सहायता ली। वैसे जब हम दृश्य का रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि छात्र जो है खाली नहीं थे, तो मुझे स्कूल का दृश्य पहले लेना पड़ा। फिर जब बच्चे लघु परीक्षा करके आए तो फिर तीसरा सीन, फिर दूसरा सीन, तब मुझे सभी को सतर्क रहकर उसको फिर से एक के बाद एक उसको मैंने फिर से बनाया कि कौन सा रिकॉर्डिंग पहले होना चाहिए, कौन सा दृश्य पहले, एक के बाद एक करके तब मैंने घनिष्ठा की बहन को भेजा और मैंने कहा उसमें क्या क्या चाहिए, यानी जो पहला जो शीर्षक है ये सब सब करके मैंने भेजा, सब भी कुछ करके। तब उसने एडिटिंग करके मुझे पूरा दिन करके, एक सैटरडे था, मैं उसका आभारी हूँ कि उसने यह काम।
0: बहुत ही सुंदर अच्छी एडिटिंग की उन्होंने। और मैंने देखा कि आपने काफ़ी मतलब कैमरा को लेकर आपने मूवमेंट्स किए, तो काफ़ी अनुभव है आपको।
1: अनुभव तो नहीं है लेकिन कोशिश की, क्योंकि जब मैं ये कर रही थी तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रोफेशनल कैमरा देखा जाए, लेकिन जब खर्च के बारे में सोचा तो हमने सोचा कि कौन इसके लिए पैसे देंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद कर लूँ। तो सौभाग्य जो है, सौभाग्यवश मेरे मोबाइल पर ही जो अशोक वाटिका है उसका सीन आने लगा, किस प्रकार से वे लोग ये सब सीन ले रहे थे, तो उसको बार बार ऑब्जर्व किया देखने से, तो मुझे ये लेना आ गया, तो मैं ही खुद मैंने इन लोगों का दृश्य
0: लगे हाथ। इस नाटक के जरिए बच्चों की भी प्रतिभा हमको जानने को मिला और आपकी भी एक नई प्रतिभा जानने को मिला कि आप भी कैमरा हैंडल।
1: मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, बस कर दिया
0: और अच्छा भी आया,
1: भगवान की कृपा से ये सब ऊपर में।
0: और एक्टर्स लोगों के, कैरेक्टर्स लोगों के मेकअप और ड्रेस के बारे में बताए।
1: मेकअप तो कुछ खास नहीं था लेकिन ड्रेस हमको चेंज करना पड़ा, तो मैंने ही उन लोगों को कहा कि पहले सीन में कैसा होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ा, फिर तीसरा जो दृश्य है वो जो छोटी बहन थी, फिर शाम का समय था, घर का समय, घर पर थे तो हम लेकर वहाँ पर हमने पोशाक को बदलना पड़ा, यानी ये सब खुद बच्चे लाए थे। और साथ सज्जा जो है, मैंने पूरा जो घर है मेरे अपने यहाँ से सब लाई थी, जो है साज सज्जा किस प्रकार से। और हम रेक्टर का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने हमें उनका ऑफिस दिया और मैंने जो सामान घर से लाई थी।
0: अच्छा, ये लास्ट सीन वाला ऑफिस का
1: ऑफिस है, लेकिन सामान जो है घर से है।
0: ऐसा लगा कि एक मतलब एक सलून की तरह,
1: हाँ, बैठक की तरह बनाना ही हमारा उद्देश्य था।
0: बहुत ही सुंदर। इन सब को, इन सब की तैयारी में आप लोगों को कितना समय लगा?
1: 3 सप्ताह हम यानी अभ्यास करना, लाइन को अभ्यास का अभ्यास करना, फिर उसका रिकॉर्डिंग, ये सब 3 सप्ताह।
0: 3 सप्ताह 3 सप्ताह में पूरा हो गया?
1: पूरा हो गया, इन लोगों ने सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया।
0: तो अगली बार आप लोग एक मतलब फुल लेंथ में मालूम है एक पूरी कहानी स्टेज पर 40 मिनट तक स्टेज पर रहना आप लोग कर पाएंगे?
2: बहन जी की मदद से हम कर पाएंगे।
0: क्या बात है, आत्मविश्वास है, यही होना चाहिए आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ। देखिए आत्मविश्वास और एक होता है ईगो। ईगो और आत्मविश्वास में बस एक छोटी सी फर्क है कि आत्मविश्वास कहता है कि मैं कर सकता हूँ और ईगो कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, वी कैन डू इट। और कॉलेज की ओर से भी सहयोग मिला, डॉक्टर की ओर से भी सहयोग,
1: का ऑफिस भी मिला, हाँ हमें उसने दिया, क्योंकि एक पहली बार जब हमने किया था तो बाहर किया था लॉबी में, वहाँ पर काफ़ी शोर था।

0: तो इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा, पूरा दिन लिया सो करने के लिए। फिर ऑफिस डायरेक्टर जी ने हमें ऑफिस दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद डायरेक्टर ने या फिर किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलिए कि फिर से ये नाटक आप खेल लीजिए?
0: अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी ने कहा दिखाने के लिए। मैंने कहा बाद में दिखाऊंगी थोड़ा, यानी
1: फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप में,
0: बच्चों को फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन सभी को नहीं फॉरवर्ड किया, अभी तक तो नहीं किया।
1: तो बच्चों की एक प्रतिभा है लोगों को दिखाना है।
0: अवश्य अवश्य, सभी लोगों ने कहा, तो मैं इसको
1: कहते हैं कि सच्चे कलाकारों को ना हीरे चाहिए ना मोती, मिल जाए अगर लोगों की ताली तो भर जाते हैं इनकी थाली, तो लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए। तो लगे हाथ नाटक के साथ साथ हिंदी भाषा को भी हम बढ़ावा देते हैं। हिंदी भाषा को आप टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से आगे ले जाते हैं?
2: टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से आगे?
1: आप टाइप करते हैं, सब कुछ टाइप करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं?
2: टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करते हैं हर चीज़ों पर, और हम उसे आगे ले जा सकते हैं जब सारे युवा एक साथ मिलकर ये जो हिंदी पर हिंदी प्रतियोगिता पर भाग ले और ज़्यादा भाग ले और उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर जाए, तो ये भविष्य के लिए कितना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी। और वो हिंदी सिर्फ एक भाषा तो नहीं है, क्योंकि हिंदी अब अब्रोथ में भी बोला जाता है, तो हिंदी हर लोग सीखते हैं।
1: हिंदी एक वैश्विक भाषा, विश्व की भाषा बन गई है,
2: हर लोग सीखते।
1: तो बहन जी, लगे हाथ कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। इस यह प्रश्न में हर एक हिंदी अध्यापक से मैं पूछता हूँ, आपके अनुभव से आप इस मांग को आप किस तरह से देखते हैं, जब छात्र आते हैं बोलते हैं कि अभिभावक ने एक पत्र लिखा, बोला कि अभी हमारे बच्चे हिंदी नहीं करते करना चाहेंगे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं?
0: मैं कभी स्वीकार नहीं करती इतने सालों के काम में मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा बैठो, कुछ ना कुछ तो सीखोगी। कभी भी स्वीकार नहीं किया एक पत्र ऐसा, कभी भी। और इन लोगों को पता है कि मैं कक्षा में सिर्फ हिंदी में ही बात करती हूँ, कुछ अंग्रेजी शब्द लेकिन क्रियोल में कभी बात नहीं की।
1: नहीं, जिस भाषा को आप बढ़ावा दे रहे हो उसी भाषा में आप बात कीजिए। आप किसी भी भाषा में बात कीजिए, किसी भाषा को अपनाना चाहेंगे लेकिन उस भाषा का सम्मान जरूर करना चाहिए,
0: यह हमारी पहचान है।
1: बिल्कुल, आप देखिएगा कि इस भाषा हिंदी भाषा का उसका महत्व आप देखिएगा कि आप हिंदी सीख रहे हैं लेकिन हिंदी के जरिए आपने नाटक में भी भाग लिया, नाटक के आपने फिल्म में भाग लिया, नाटक एक फिल्म की तरह तो है और पूरा जो पूरी जनता लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसका इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग इसको अपना रहे हैं और आपको बधाई भी दे रहे हैं। ये सिर्फ हिंदी भाषा आपको दे सकती है, इसको और लेके जाइए आगे और इस पर आप लोग गर्व कीजिएगा। बहन जी बबीता जी आप आई हुई है और साथ ही साथ गौरी देवी नंदू जी आप आई हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार आपको।
0: नितेश जी, आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, मैं आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ, आपने हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया।
1: अगली बार अगर आप लोग ऐसे ही किसी मंच पर कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो जरूर हमें याद कीजिएगा। मंच आप लोगों के लिए है, कलाकारों के लिए है, नाटक प्रेमियों के लिए है, जहाँ पे वे लोग आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं।
0: एक और मेरा यानी एक संदेश है नौजवानों के लिए, बिल्कुल, कि हिंदी को नहीं बोलना चाहिए, सीखनी चाहिए, ये बहुत सुंदर भाषा है, मीठी भाषा है।
1: जरूर, आज मीडिया के जरिए, रेडियो के जरिए हम बात कर रहे हैं, संपर्क की भाषा भी हो रही है हिंदी, तो इसीलिए बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहे इसी तरह से, और नाट्य कला कार्यक्रम को आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहेंगे, नाटक में आप भाग लेते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, आपके लोगों का इंतज़ार रहेगा। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। सर्कुलर रिसाइकलिंग इकोनॉमी के संदर्भ में DKG प्लास्टिक पाइप्स उद्योग प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में खासियत रखता है और आज ये इलाकाई स्तर पर पहुंच गया है। हिंद महासागर आयोग की एक्सप्लोआ परियोजना के संदर्भ में एक पहल के तहत ये उद्योग प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष करता है और उसकी विभिन्न गतिविधियों के जरिए वो इलाकाई सतह तक पहुंच गया है। रियांबेल के एक बंगले में रोजबेल की आदसूनी कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज़्यादा कुकीन को जब्त किया और कल बंगले की तलाशी भी ली गई और मालकिन जयंती देवी जगरू को गिरफ्तार किया गया। उसकी उम्र 41 साल की है। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज है। एक मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया। कुकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपये की बताई जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्तलिफ श्रमिक संघ एक नर्स पर की गई हिंसा के बारे में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि वो देश के इलाकाई अस्पतालों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करे। विदेश में मध्य पूर्व की जंग के चलते पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि नोट की जा रही है। इस बीच भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली ने ऐलान किया कि वो सोना चांदी और प्लैटिनम पर टैक्स की कीमत को बढ़ा रहा है। इसका मकसद विदेशी मुद्राओं के रिजर्व की रक्षा करना है और व्यापारिक घाटे को कम करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। नंबर 28, नंबर 28 डॉक्टर हसन साकिया लेन रोजहिल में 94 साल की 94 years old बीबी जुबेदा सुब्राची, बीबी जुबेदा सुब्राची पैदाइशी नाम चमन, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज तीन बजे इनके घर डॉक्टर हसन साकिया लेन रोजहिल से उठाकर दफनाने के लिए फेनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड पेलघा सेबास्टोपोल में 50 साल के 50 years old श्री रामजीत जोगुरु जो जों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर रॉयल रोड पेलघा सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेलघा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio. Your

सभी को नमस्कार और आदाब। इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और आज हमारे साथ हैं कादेर कोदादीन, दीपशिखा प्रोडक्शन सहायिका और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो है रितेश महावीर। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे अभी से लेकर दिन के 10 बजे तक। वैसे आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो विषय हैं वो क्या है, तो आज का हमारा विषय समर्पित है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को, फैमिली बजट एंड इंडेप्टनेस, यानी कि पारिवारिक बजट और बढ़ती कर्जदारी। तो आज के समय में महंगाई, रोज़मर्रा के बढ़ते खर्च, बच्चों

0: कर्जदारी। तो आज के समय में महंगाई, रोज़मर्रा के बढ़ते खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहे हैं श्रीमती जयश्री वसावन सुपोल जी हमारे साथ हैं और श्री रणवीर सिंह मिट्टू जी। तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत और नमस्कार हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए कीमती समय निकाल करके। तो जैसे कि अभी हम बोल लीजा कि हम बत्याबा फैमिली बजट पर, तो मिट्टू जी हमने के पहला ये बताओ कि जो बजटिंग जो है फैमिली बजट जो है एक मतलब सरल शब्दों में हमने के समझाओ कि ये कौन सी है, एक मतलब का है।
1: जब बजटिंग के किशा बोला बजटिंग के एगो फैमिली बजटिंग कुछ बोल जला एगो बजटिंग बोल जला कैसे हमने अपन एगो प्लान कर ला सा कैसे अपन दीप सब कर सा जहाँ सब कोई को बजटिंग कर ला ए झगते माँ वे झगते माँ आदमी लोग बजटिंग कर ला से इसे लोग के प्लान कर लेके चाहे ला कैसे जान सा सब चीज तो आज से सब के सब दाम तो बढ़ता तो हम निकी को आज चाहे को बजट करे के जामे कहा है हम सब अपन अपन डिपेंस करे दाफ्री हमने के रेवेन्यू है चाहे जितना लापे सब मिलेगा कैसे सब अपन डिपेंस करे काहे प्लानिंग होला प्लानिंग होला काहे जामे जब एगो बजट करवा तब वो कंट्रोल रही ओकर बीजे में कंट्रोल रही कुछ यहाँ किने के कुछ यहाँ किने के तब एगो दूसरा सवाल आवेला नीड्स एंड वॉन्ट्स एगो नीड्स प्रोमियम चला के नीड्स दिखे के कौन चीज चाहेला आवश्यकता बा कौन बेसिक नीड्स बा जब हाई सब फुलफिल कर जब हाई सब डिपॉन्सा प्लान कर दीपा तो आगे में हमने प्रॉब्लम नहीं हुई मजा हाई एगो प्रॉब्लम नहीं उसको डेट में हेले के तब प्लान कर तब जैसे बेसिक प्रोडक्ट किन जिस मिला राशन किन एगो प्लान कर एगो एगो लालिश बनाए रह सर कुछ चीज चाहना किने के कुछ चाहने किने के तब वही खातिर प्लान अच्छा बात जमें कहें लाफे जिमा में जब लापी में लाफे जिमा में सब प्रॉब्लम हुई तो सोते जाए पैसा के मारे कुछ सबक किने तब लुके जाए एगो प्लान करब तो मजा जस्ती अच्छा से हाउ मुआवा से बिताए सब चीज डिपॉन्स करे
0: तो एक पर जस्ती खुलासा दिव अब जहाँ ईव कार्यक्रम के दौरान तो जयश्री जी हमने के बताओ आपके देख में है कौन सी है फैमिली बजट।
2: फैमिली बजट जैसे बोलीला सर सब कोई के एगो रेवेन्यू है जैसे उकर पैसा है काम करब तो सालिया मिलेला तो एगो फिक्स सालिया मिलेला अपनो काम करब तो एगो फिक्स सालिया मिलेला नहीं ये है कि जैसे पैसा मिला था खूब खूब खूब चाहे दे पहुँचे करके नहीं हमी के एगो फिक्स सोम मिलेला तो हई सोमवा में से हमी के चाहेला जैसे बोलिया सर बजट प्लान करे के कौन चीज़ चाहेला किने के आगे जस्ती जरूरी बा ओके बोले और जौन चीज़ सकब सा ताले बाद में किने के जैसे बातें जैसे एगो हमके एगो लुटो जोली लगल
0: हाँ।
2: हम बोलते हैं हाँ हाँ लुटोवा किनब अपन जूसर चीज के ध्यान नहीं रखब सिपा लड़का के ट्यूशन पे करके बा लेसों पे करके बा घर के लोन बा पे करके इलेक्ट्रिसिटी बा पे करके नहीं नहीं जल्द चल जाएगा लोटो किने तब जैसे अब लोटो किन ले बता पैसा चल गल तो अब क्या करब हम महीनावा कैसे बीती इसी से हमके सब कोई लोग के चाहना एगो बजट करे के अपन डिपेंस अपन रेवेन्यू के अनुसार चाहना प्लान करे के
0: आजकल काहे काहे ये जरूरी हो गल बा कि एगो परिवार के ये चाहे बनाए के एगो एगो
2: बजट बजट जरूरी हो गल बा आज के दिन में
0: आज के समय
2: पर क्योंकि सब चीज तो महंगा होता सब चीज बढ़ल जाता जहाँ जाएबा बुटीक में जाएबा एगो कोका किने तक कोका के दाम ढेर बढ़ गल बाते तो ऐसे जब बजट नहीं करब तक किन ले जाएबा नहीं जानबा कितना पैसा दे पहुँचे करत हुआ अब पैसा दे पहुँचे कर देला तो देख घर आईबा तो देखबा तो एगो जूसा जरूरी काम रह करे के तब पैसा नहीं बा
0: जैसे अभी कुछ पहले भाई बोलक नीड्स एंड वॉन्ट्स हाँ, एकर पर आवे रहा है
2: हाँ, नीड्स एंड वॉन्ट्स से ताजा नीड्स बोलल जला बेसिक नीड्स जो चीज जस्ती जरूरी बा जैसे खाना इलेक्ट्रिसिटी के बिल वाटर पानी के
0: जो रोजाना के चीज है हाँ, जैसे से बे वाटर इलेक्ट्रिक बिल बस ये सब चाहे ये जरूरी है
2: ये जरूरी है नहीं पे ये कर बता कटा जाए कटा जाए नहीं तो पेनाल्टी पर पे करे के तो जस्ती आर दीपोसा बढ़ जाए तो समय समय पर पे करब अपन सब चीज बजट के अनुसार तो देखब लाफे जुमा थोड़ा बच थोड़ा पैसा बच जाए नहीं तो ऐसे तो सब पैसा

0: सब चीज में चल जला तो देख ले वैं ले होल बहुत परिवार में ऐसे प्रॉब्लम होला ले वैं ले होल तो लोग के पैसा नहीं बा और पैसा नहीं बा 20 पे ये करे के जाए के काम करे तो अब क्या कर जाए बा उधार ले
1: तो ये हमनी के जो चर्चा आज फैमिली बजट और कर्जदारी पर भी बा तो जैसे कल 15 मई है सब कोई जाने लगा लेकिन इसमें कि हमने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावे लगा तो हमनी के जो प्रोग्राम है ये जस्ती पर यही फैमिली वी पर रही तो सकबा बोले हमनी के जैसे अभी बोला एगो एगो मतलब दंपति उ लोग के साले आवेला तो अच्छा रहत कि उ लोग अपन दोनों जना सोच समझ के अपन खरीदारी करें जैसे चाहे जाए करेंगे तो अभी हम जो नीड्स एंड वांट्स तो एक पर आप सब कौन चीज सकबा बोले कि कौन जस्ती ए पोता वाले के गो फैमिली में गो परिवार में
0: फैमिली में जस्ती हैं पोता में उ लोग के देखे के चाहना कुछ ही है उ लोग के डिपोंस जरूरी रो हर महीना जैसे बोली सा आगे इलेक्ट्रिसिटी दे लो टेलीफोन सब ये सब हर महीना बिल आवेला चाहना पे करके नहीं पे करब तक कता जाए अब कोने परिवार से ये मैं ले लग बा उधार पर कुछ सामान ले लग बा तो वह चाहना पे करके
1: मंथली
0: चाहना पे कर कोने परिवार के लोन बाते लोगों के चाहना पे करके अब लड़का लोग लेकुल जाला लेकुल के सामान चाहेला वह खातिर पैसा चाहना और आर जरूरी है खाना जैसे राशन चाहना किने के ये सब चीज तो नीड्स में आवेला
1: तो भाई मिट्टू जी तो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जुन है जनता के कैसे जानकारी दे बोला कोनो अभियान रहेला तो लोग बगल से सिपा फाइनेंशियल अवेयरनेस खातिर कोनो अभियान रहेला कि कैसे जनता के जानकारी दे बोला जा
2: ना जैसे से हमारे कोलिग बोला को को स्पेशल जहाँ प्रोग्राम नहीं होला जब हम यहाँ चेक सब करे और मैम तो बोली ला सदमी लोग से कुछ यहाँ करे कि कुछ कैसे डिपॉन्स करे कि आपकी प्रोग्राम के रहा राजू मैं है हम के गुजर यहाँ मजे आदमी लोग के मिसाल पहुँचा के जना के कुछ होता तब है से आवेला फिर से आवेला कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवेला कहे भी कंज्यूमर कैसे कोई डिसीजन लेबा कैसे बजट कर लेबा कोई डिसीजन चाह लेके तो प्रीमियम राइट्स ऑफ कंज्यूमर राइट फॉर इन्फॉर्मेशन तब तक इन्फॉर्मेशन मिली कुछ किने कुछ पे कर इन्फॉर्मेशन मिली तब सब स्वास्थ्य करे ना तब बजट के हिसाब से अपन डिसीजन लेबा कुछ ना किने के हर सब राइट्स ऑफ कंज्यूमर हिलेला तब में हिलेला रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ करता पैसा से कैसे डिपॉज करता कैसे बोला हमारे कोलेग बोला था एगो बजट करब तब जो कि जानकारी हो कहाँ पर डिपॉज ना करके जैसे आदमी के लोन सब रहेला सब चीज पे हो जाएगा सकता था लोन आगे तब जब बोला जा जब सब डिपॉज कर देवेला तब एगो डिस्पोजेबल इनकम मिला उसके एगो सेविंग कर अभी के जमाने में जैसे जाना कि सब चीज चढ़ जाता तो आदमी को बजट करके टेंशन डिफिसल होता तो इन बार फिर कुछ बोल जरा निकाल तुम सबको बजट में से मैं हाँ बजट आपकी फिट हो के तब हवे खातिर वो लोग करते जामे वो लोग के प्रॉब्लम नहीं आगे में है जैसे नीच एंड वॉन्च रहता जैसे नीच रहता वॉन्च जैसे बोला का एगो दाफे कि ना ऑफिस कैसे दो महीना में कोई शादी बा इस बार एगो एगो भोज पहुँची हुई के तब चाहे लगवा जाने की कैसे कैसे विजवा करता तो कैसे पैसा ना मार सकते हो तो सब से करे अब जैसे आवेला जैसे लाने आवेला बोनिस मिलेगा आदमी मिला हाँ चला कोई वो दाफे कि निकला घर में डाले के हाँ तो ओके जाएगा कोई बोनिस मिला बा तो जाके सब किन कान देवेला तो हर आदमी बोला सा हमेशा किने के आगे वो चाहे जाने के कुछ किया था कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा थोड़े लोग राइट छेला राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू चूज स्वास्थ्य करके और इन्फॉर्मेशन मिल के उस आधार पर तब लोग कोई डिसीजन ले कुछ छा किने के पागे बहुत है जब एगो पाहों जाला कुछ चीज किने तो लड़का लोग जैसे बोला लड़का लोग सीखेला पाहों से जब पाहों एगो निमन से बजट करता तो असर वाला लड़का को पड़ेला तब जा लंग से कुछ चीज किने तब दिखना था पाहों कैसे करता कैसे किने था तब पावा अपन अपन अपन विजय करे बाबू तब फोर है सब धुआवन जाना था तब उसका आधार पर किछुत करेला तब वो है कैसे बोलते हैं डेट में नहीं हेली तो डेट में हेला तब हुआ मैं कैसे बोला बेसिक नीचा फुलफिल करके लड़का लोग के खान पान लोग के बेसिक नीड्स कैसे लोग के घूमे के कपड़ा सब पीने के सब तब सब नीड्स तब फुलफिल होला तब देखना था कुछ करके छा आपके

0: जस्टिस सँग छ कि नै या कम्ती जान उसको आधारमा डिपेन्ड उसको बिजेप अरे सब बिजेप हामीले पाएकै नै छ कुनै के काम के हर रोज के हर समय पैसा मिला तब कि नीलम सखाई के कोनो के महीना पर मिला तब सब फैमिली के बीजे पागे नहीं अब सब को भोजन किन था पागे नहीं एक ही वालों से मजे मग के दौरान में देखे ना कौन मग छा किने के फ्री वही खाने बोले आदमी लोग के जब देख बस अब फ्री कौन पागे कर कहाँ पर सस्ता मिला था
1: कहाँ पर हाँ
0: देखे के रिव्यूज देखा कहाँ कहाँ पर हाई बात देखा पहुँचुआ कैसे बा न बोले वो पहुँचू था क्या दिला अब घर में बीजे जैसा अगेस्ट है बा तब भाव में अब किन लगा पहुँचे फोन में होता जब भाई कि जब आदमी लोग के देखे कि हर भी राइट आर उकर उकर उकर इंफॉर्मेशन मिले के अच्छा हाथ तब जाने कुछ कोई डिसीजन सकने साले
1: अच्छा ये चर्चा के आगे बढ़ से आगे एक श्रोता के सुनी ला जा हेलो
2: हेलो बहन जी नमस्ते
1: नमस्ते बहन जी
2: भाई जी को नमस्कार
1: हाँ आरे को बहन भी है
2: आरे को बहन हमार उनका नमस्कार बोला था
1: नमस्कार
2: आज देर से नमस्ते कर रहा था
1: हाँ अच्छा बोला
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम रख ले हुआ जा
1: धन्यवाद
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम रख ले हुआ जितना विधि देवत होने भैया आरे बहन जानी ना अभी के दिन जन के यार बैठी अभी आवत है नहीं जन बाकी आगे के जन जन भी देखाते होगा अभी हर जन दूसर आवत है मुझे आगे चाहे ना हो प्रमाण साझे करेगी अब घर के कौन सी करत हुआ कैसे भी बोला नहीं भी लाली मेर के बुरत हुआ जा अभी लाली मेर की तू नहीं चाहिए कर ला तो सब घर में किल्ला खाई के सब किल्ला चौन चौन भी खरीदी ले जब कुरो में काट के चल गया था कौन शोभा बात हो रहा दो तीन गो पापी रख दे नहीं ये के ये कर ला पानी के आता नहीं के ये कर ला यानी ना हर सब चीज के वो प्लान करी जाए यानी एगो बिजे बल से कितना तुम्हारा पैसा मिलेगा कौन से चीजवा आगे चाहे करेगी नहीं क्या बोला है कि ना हो कि ना हो कि ना खाए के कि ना एगो गाती आज में नहीं कि ना जो तुम्हारा निश्चित बा हो चाहे कि ना कुछ कुछ की महीना के कि ना कुछ की सेवन के कि ना अरे पानी लाल मेर के है देरी नहीं कर रही जहाँ मिली तुम्हारा अपन हाली से पहले करता
1: जी बहुत
2: अपन हाथ में जनता कितना पैसा तू रखा तो वह कितना तू लॉस करवा है सब सोच के है सब काम करी जाएंगे
1: बिल्कुल सही बोला हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके फोन खातिर और सही बोला बहन जी कि जैसे अभी हमने बोली जा कि सच्चे के हाथ में जितना पैसा बा उसकर आधार पर हमने खरीदारी चाहिए करेगी हाँ भाई जी बोला
0: तो जैसे बोल सब बजटिंग है ऐप तो हाँ जब एक आदमी सुपे मौसी जला वो जला कहा गुद्दू को बिजाफे बिजा बा वो जला था दस गुजाफे उठा का बोला तो प्रोमोशन दिखिला सब चीज दिखला बोले हाँ किन के रख दिला ओके बीजे नहीं दिखिला विखा जब जब जान से सुपे मौसी तो एगो कैसे बोल जाए आदमी लोग के डुबावे बोले आवा तो किने सर तो हम जाते हैं दू गो जाफे किने तब जख तू ना तो बीस गो जाफे लेके चाहेगा तो ओके बीजे दिखाऊ से चला कैसे बोल एगो बीजे में ऑडियो चल जाला तब आर बता हो कल बोला जला ओकर राइट्स पर अकल को रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था फ्री बा प्रोमोशन बा सब चीज बा तब अपन बीजे दिखा जिसना फोजुआ दिखा अब एक किन ने लाल दिला घरे तब हाउ महीनवा कैसे जाए तब प्रॉब्लम हो जाए कि हर खानी बस आदमी लोग के सोच विचार के देखे के काहे परखे के कुछ बा किने के देखे का अच्छा बा किने के किने तो कुछ कर सकेंगे
1: काहे कि कबो कबो आप अननेसेसरी मतलब कबो कबो एगो रेफ्रिजरेटर या कुछ आपके फ्रिजिडियर टूट गल बा तो ये एगो अलग से आल बा कैसे ये आपके बजट आपके साले में नहीं आया कि हाँ एक चाहे पर के सेविंग चाहे ना करे थोड़ा थोड़ा सुन जैसे वोंस ई वोंस में आवेला कि कबो कबो मैं रेफ्रिजरेटर उतूर कर बा एक डिपॉन्स चाहे करे के अलग से तो ऐसे में अगर पैसा हुए नहीं रही तो कौन ची कर बा
3: हाँ चाहे ना आदमी लोग के जब अपन बिजे करे रंग सा हमेशा एगो इमरजेंसी फंड जैसे बोली रंग सा रखे के इमरजेंसी फंड कबो काम चलाओ आवेला कबो एगो कोनो चीज के काम में चलावेला कबो नहीं जानबा एगो मरनी हो गल अब जैसे बोला था वह फ्रिजिडेयर टूट गल अब होने एगो एविटेशन मिल गल तो अब इमरजेंसी नहीं रही इमरजेंसी फंड नहीं रही तो क्या करब जेब मांगे उधार लेब तो फिर से उधार में पड़ जेब अब उधार ले लेता हौ महीना के चाहे ना घुमाए के नहीं घुमेब तो कैसे हुई
1: और जैसे प्रायोरिटी के चाहे जाने के ये सब जरूरी बात है अब हमने दूसर हिस्सा में हम प्रोग्राम जन से कर्ज धारी मतलब बढ़ती कर्ज में ये कौन सी बुबाई कर पर
0: जैसे कर्ज आदमी लोग के जैसे बोलिए इंफॉर्मेशन चाहे ना

0: is ik niet gedaan. Ab oké, ook al bij jitten niet, ten restant wel maar. Ab oké, banken daar, ik vraag me ook al ik go applyen zullen we, ik go mijn goede op dit geval. Ab kuch kari, u servie kari halu, dus ke. Tab bodi, ham ge chalaan ki nee, ke ab ko haan kari. Tab fiets je daar go duizend bodi, eh. Tab de hamal lapie ba, dikhate al go loan mili. Tab jen hou budget jen paise wa jen jen rahal jen ook al basic needs ka thal, ook al needs wa jen ook al familie ke ook al basic need ki na thal, khaik paan khan paan sab sab pay ka thal, al uti tis bil sab pay ka thal. Tab hou maja bizar me se chal jaate hain sun, duizend chiz ki na ta. Fiets je go loan nee lag, tab duizend loan mein ba, te fiets je go loan nee lag, tab wo ta hai zafay ko bizar ba ha. Tab ok chana jaane ke iski sakhi lo habi ki ne. Ou bien, dekhi tension paisa jutaye tab boli atan ka ek do mahina tension lamas ke ek pay kare kin do ab dekha pasi aadmi aise hai jaise ko dafa dusra jal ki ne dusra chit pasi how level ke visa ba how level ke visa ta kuch ke do mahina atan kari tab boli pito hai go det me hel jala tab ek share khoj la det tu det ke share khelte helte ke majar kin den ki uta ne jan ba le entre pay ko to le entre ko den jab har mana pay ko to ek ko ne pay ko to le entre de bata double ko jan prix Lah tu kau ha, produk ha, cuma mili rupiah, dim rupiah, tapi ia kalau entah kita. Hai, sebab mungkin kita pensi kalau ke, ha, jangan ya produk aku visa bahaya lewa. Abis semua, okal kosu ba, inca kalau ke, sekarang si 30 mah ke, tapi kita sahaja ini gulal lah, kami lagi higher purchase atau credit sale, higher purchase, bahari 30 mah, macam mana? Okay, ego limit de 30 mah, okay, ego cakap entah kira ke, tapi kalau mungkin kita sotche ke, kaise ego zafek ni ta, fikir right and responsibility hela, right information hela, right to choose hela. अभी जब भाषा बोला था उग आदमी जब भाषा जाने ला तब सकीरा को इनफॉर्म डिसीजन करे इनफॉर्मेशन कुछ बोल जा वो जाना था वो कस्टमर स्मार्ट था जाने ला हाँ हाय आदमी या हाय बोलता हम कि हमने कि नब हाउ कि नब बस हाय जहाँ है पोज़ा नहीं चाबा सकीरा को आदमी को कोई नहीं होता हाय चारों तरफ देखे के कहाँ अपनी कोच की नजर से जब एको फोज़े मिल रहा था हमें लगा लालवा बा फोज़ा एको अप्लाइंस टूट गया था लालवा बा ये बाहर करके तब एको प्रॉब्लम में है बना जैसा को लोन नहीं लगा राफे की नहीं के अब टूट गया अब नहीं सकता सही करे अब लालवा निकल सा हमें लगा एको प्रोसीजर है ना जैसे आज कॉम्प्लेंट करा था कल नहीं सॉल्व होना है प्रोसीजर है लालवा शुरू कर अब सर उतना दिन में उतना दिन में आदमी को पूजी ने सभी करा था तब ओके चला कोची ने उकार जो लोन नहीं ला पे करिए कम नहीं सभी
1: तो हो जन आसान लोन आपके देखे मैं जयश्री जी आप ये आसान लोन आप क्रेडिट फैसिलिटीज जो है ये ज़्यादा जनता लोग के मतलब खर्च में प्रेरित नहीं करेगा
2: हाँ हाँ ये सब स्कीम तो अट्रैक्टिव हुई बात है बस कि बोले लेंगे सब देख बा जाए बता अभी फिट मामा के
1: अभी
2: Aste aste là payé dans 30 mois c'est pas payé sans 6 mois gratuit hay sab ti joint de ba pay là bar ta attractif là que là akashan là que là lekin ye isme hele se pehle chahe na jaise bola bhai ji bola hai right to information right to choose etc ye sab ti joint dhyan dal ke tab chahe na कोनो क्रेजी में है देखे और ये रिपेमेंट कैपेसिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है रिपेमेंट कैपेसिटी जाने ला चाहे ला जाने के सकबा पे ये करे आज पे ये करत हुआ था छः महीना में सिचुएशन हो कब वो पारे हुए नहीं रहे ला कब वो मलाज हो दे जब तक नहीं सकबा काम करे जाए तक क्या कर ब नहीं पे ये कर ब तो लेट घरे आए लगी ये सब चीज चाहना ध्यान में रखे
1: और ये सब अगर ध्यान में नहीं रख बा तो तनाव पैदा होला
2: हाँ तो स्ट्रेस
0: में
1: स्वास्थ्य में बिगड़ जा रहा
0: है स्ट्रेस से
1: हो जा
0: लो जैसे यो फैमिली हाँ फैमिली सोसाइटी में कि एक हिस्सा है पूरा हाँ फैमिली वही सब लड़का रहेला माँ बाप रहेला और कहाँ जिम्मेदार से बोला सा सीनियर सिटीजन वो रहेला तब जितना जो डिसीजन ले वाला फैमिली वाम है वो सब क्या फिट करेगा लेको लड़का के फॉर एग्जाम्पल था एक फैमिली में को लड़का बा एक फौजी किन लड़का के सिपाही को जुजू किन ला तो उसका मैं एक बार सेफ्टी स्टैंडर्ड था देखे कि चाहिए ला लेकिन नए एक बार जब एको जुजू था कांड दिला सिपा प्रॉब्लम बा पर हमें लगे एको एको हमने जुजू के टेस्ट किया हमें लगे मिनिस्टर में देखी ला सा जुजू अच्छा बा सिपा उसका मैं बार पोर्ट सिपा कि लड़का खा ले सके प्रॉब्लम हुई तब उबिया उसका मैं बार लिक्विड बा सके हाथ जा रही सिपा सिपा सके कहूँ छुआ एक लापू जा जाए हर सा हमें के मिनिस्टर टेस्ट किया जैसे पेली सब फ्लाम अब जितना स्केल जैसे आज आगने धरी से एको प्लस उन्हें लग दबा आग धर दले कोई प्रॉब्लम हुई तो अगर सब भाई जाफ़े वन तो पागों जानी कुछ ना कर लेके वार्निंग साइन बा कौन लास्ट की कौन जुजुबा सिर्फ पोजियों में कौन स्मॉल पोर्ट्स बा तो आय अच्छा बात जाने कि हम जब हमने टेस्ट कही ला सर टेस्ट वाला टेस्ट हाई होला टेस्ट मिनिमम होला अब एगो स्मल पर्स के जुकिन ल तब घर अन्ला लैका के दिला तो सकल पासो लो ते सब स्मल पर्स अब

0: parents que responsabilité elle est là que au collège il décrit qu'il y a même high pour jouer mouvement dans la ta si par coach que toi que c'est high ball dans rights ba à responsabilité ba ta high décision que parents le là et que zozo qui n'est que ta high घर में अलग तब एक दिन वो प्रॉब्लम हो लाइक बात तब क्या अफेक्ट हुई पापा फैमिली
1: के अलावा और जस्ट चीज रहे ला
0: हां तो वो फैमिली का अफेक्ट हुआ हां तो फैमिली वा लाइक अपन पापा की कॉपी करेगा किसी से पीटी से भागो जिसे करे ला उसने कहे ना सर तब एक ने जो पापा हुए एगो निमन डिसीजन ले वो अफेक्ट किने के ओका ऐसा लाइक अब पड़ेगा तो लाइक का पापा पापा को सेव कर जाओ पापा ने बोले सब पापा निमन मूवी डिसीजन ले ला कोना निमन डिसीजन ले ला कोना पापा एगो अफेक्ट किमे 100% हाइन रही अच्छा नहीं रही ना बफर को प्रॉब्लम हो रहा था वही लड़का लोग मैं जाने ला तब जैसे कॉन्टेक्स्ट फैमिलियर बोलते हैं तो है सब एक फैमिली में डिसीजन ले रहा था अफेक्ट कर ला पॉजिटिव में और नेगेटिव में डिपेंड कुछ की नहीं चलता
1: तो हम लोगों के श्रोताओं और दर्शकों से भी मांग करते हैं आप लोग अपने बजट जो है वो कैसे करते हैं किस चीज़ का सामना करते हैं बेशक आप हमें अपना मतलब अनुभव बांट सकते हैं 4028085 पर तो फिलहाल कादिर आपके लिए गीत चलाने जा रही है

0: छोटी छोटी बचते ही बड़े संकट में सहारा बनती है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स श्रीमती सुपोल जी, जय श्री सुपोल जी, और मिस्टर मिट्टू जी हमने के संगे हैं। तो अभी जैसे हमने बोली कि फैमिली बजटिंग कैसे चाहे करे के, तो हमारे देखे में एगो जब कैसे मान ल महीना के खरीदारी कर राशों जब चाहे लेवेला, तो ई महीना हमने खरीदारी तो आगे से भरे के एगो श्रोता के सुनीला जा। हेलो हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते भाई जी, स्वागत है आपकी चर्चा में।
1: मेहमान लोगों को भी नमस्ते और उन लोगों को बहुत धन्यवाद
0: जी। भाई जी
1: तो बहन जी एगो साहब कालकिर से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि लोकेशन लाका जिसमें रूपी इलेक्ट्रिसिटी 1000 रूपी, पानी 500 रूपी, राशन 15 रूपी, लेगिम 4000 रूपी पर मोह, गोश मच्छी 4000, मगाजा के पे कर 3000, लड़का के डिपॉन्स और ओकर में तोहर कपड़ा उपड़ा सब किनब, तो तोहर बिजे कब्बो नहीं बैलेंसे हो पसकी हमनी के बाद साले बहुत कमती बा। जब बाद साले वे नहीं मिलता अच्छा तो कौन बिजे सकब करी। और जो बुटीक लगे बा, बुटीक बगल से गनब तो सब चीज हुआ पर ही महंगा बा। अरे जो प्रीफिक्से बा तो दूसर चार दाल सिपा का, अब वो 200 रुपया के एगो चीज देख बा 400 दाल ले बुटीक में खाली ऑफिसे कर दी। तब जे एगो लाखम जो 100 रुपया है तो वो दाल ले ओकर में 400 रुपया वो भी ऑफिसे कर रख, तो वो लोग बड़का चोर है। और यहाँ बाल साले कितना बरिश से मोटे नहीं होबा, तो तोहर प्रेम तोहर काये लेके कितनो बिजे करबा कब्बो नहीं बालों से। बहुत धन्यवाद बहन जी।
0: धन्यवाद भाई जी। और हमर देखे में जो इन भाई जी पर लग इतना सब कोई एकर मतलब इतना सच तो नहीं है हमर देखे में।
2: नहीं जैसे भाई जी बोलक prix bas 200 que place 400 dollars hein, t'as ça vous voulez que Maurice Metting a été pris hein, il vaut prix fixé hein, algo prix contrôlé hein, algo prix libéral hein, et c'est bah j'ai bien compris prix bas et vos affaires mais contrôlé n'est pas ou combien à ce moment ou prix bas ça qui n'a d'aller où ta fille ça a là ou qu'elle a une responsabilité ou que des cas manga de vous ça d'aquelle place des cas je sais Maurice Metting fixé hein, pomme de terre soyons gaz a fixé hein, ou que c'est justice manga ce qui veut dire et que vous m'avez le mot que c'est doud ça va doud à tel va ça fait gouvernement subsidie là 50 piquet ou peut-être fluctuer toi soit fixé hein, ou que c'est justice ça veut dire non, tu as que privat que tu as dans que qu'on fixé hein, qu'on mot que mais qu'on libéral hein, libéral donc voilà ça c'est côté quoi cas va la carte mais ça fixé là là hamis gouvernement fixé que la privat ou privat comme d'aller n'importe quoi qui d'aller et qu'on place qui descend mais tiens qu'on place qui descend 50 t'as toutes les informations mais là des gens descend 50 t'as prix ouais des cas grand qui me
0: quand tu parles de ça j'ai John Pai j'ai pu parler
3: hein j'ab prix j'essaie de bonne produit que bolira ça libéral hein n'est fixé hein t'as combien sont le que droit bah n'importe quoi prix d'aller qui अब रिस्पॉन्सिबिलिटे भी ला ग्राहक पर जब जा लंग सा किने देखा तो सब प्री जाने लंग सा हौ मगाजा हुआ में प्रीवा 100 रुपये बा हई मगाजा हुआ में 400 बेचा था, तो हम ही बोली ला सर नहीं किने के हई मगाजा हुआ में
0: और मान लाख हम ही ई हमनी के जरूरी सामान नहीं है, मतलब चाहे ला कि दे के बकिर जैसे रोजमर्रा के जीवन में जुन सबसे
3: एसेंशियल
0: है ये पर नीड्स और वॉन्ट्स पर मान लो ये महंगा है, तो मान लो एक दंपति के सिपा वे मिला हुआ था के घर में, मान लो वे मिल रेंट्रे होता तो एक पर कौन चीज सकब बोले कैसे ओके चाहे तपन मतलब पोताज करे के अपन
2: जैसे आदमी के डिपा कौन ला पे मिला था डिपा एगो एगो फुसे तक मा जा आवरे दे ला सब लोग आदमी के मिला था अरे 20000 से बोला जैसे आगे हमने के माँ बाप का था लोग रीजन हल एगो लोग हर कुल तन सा राशन के नसीब बताए तब एगो लोग को लालिश कर थल लालिश वाले लिख के जात लंग सा la boutique ça ça ça dikhat ça compare ça dikhat ça kon prix ça dikhat ça le go bidje ça
0: ye bole kar li hai go man aaj ek hai mahina ke apan khareedari kar le la aavat mahina ke acha ne rahat ke majhe go record rakhe ki
2: ha jab jab pratico kar jan sa is hai mahina ke go la list

0: जी गुल हालिस पोताने बताए गुल हालिस कर आगे हम नहीं आगे के लिए पोक करत लंग सर लोग बीजे कोथुल में रहल तब जब सही से गुल हालिस कर हई महीना हो महीना एगो ओवर टाइम कर सर कुछ बैंक सेंक मिल मिलल तो उ हिसाब से को बीजे एडजस्ट करियन सर पैसा वाला मशीन सर तो हो महीना से कि कमती मिलबा तो हई तीन महीना हुआ मैं इस तरीके से कंपेयर कर कंपेरिजन करे कौन फौजी मोटे होलबा कौन फौजी कमती होलबा कौन हमके चाहेला कौन नहीं चाहेला हाई बीजे वाले के गो लीजिए देवेला कहाँ को ले जाता कौन समाते कहाँ जाता इसके फौजीवान मोटे हो ले जाता या कहाँ को चल को घटाए के कौन कौन बीजे करे के उबिया वो फौजी निकाले के नहीं किसे बता ग्राहक बोला गो लाख है मेरे को लाख है वो कुछ में चिखा सब आज डाले काल नहीं जाए दे पाओ आदमिया को कर उकर से भी कुछ करता कुछ चाहता वो तब हाई बीजे हुआ तो हबी के लिपुक में
1: जाइना हाँ
0: सब सब कोई मजा उकी पे हाँ कोई की लेता नहीं लालिस करी के जैसे तालबा बोली एक आदमी लालिस नहीं कर ला गर्ल दू को साफे की नहीं तब बीस गुजाफे लेके चला तो बीजे में आंधे चल गल तब हाई में कंट्रोल नहीं बना जब वो का बीजे करी उसका लालिस करी सही कौन पाए करे जैसे हम ग्राहक का बोला बीजे में कंट्रोल नहीं पा डिपो हाँ कौन एंगल पे दिखा था जब एगो बीजे सब कंट्रोले करे हाँ चला जो दफे कर था आगे एगो दफे चला रिस्ट्रिक्ट करके
1: यो में जब बल्ब दिखेला बिजली बल्ब ओ हमने के ये मांग करा कि लोग के चाहे लेड जैसी यूज करे के उसका प्रयोग करे के बस वो कमती अथी
2: कौन
1: से कमती कौन से भी कर रहा और जहाँ तक जो सब्जी जो घर में रोब जो तनी तनी चीज ये सब मिसे का बजट सा क्या करी
2: हाँ जब घरे थोड़ा मैं कुनो कुनो के हाई ने बात लाते या थोड़ा ने बात तब पो में सब बा प्लांटे थोड़ा कुतो मिली डाल दिया लाके जुआयों तब ये सब चीज नहीं पड़ी किने के बाजार से जब ने किन बता अपन बजट के जस्ती सब बा मैनेज करे अब जेकर थोड़ा बहुत लाते या बाते घर के आगे घर के पीछे तो थोड़ा लेगिम डाल दिया प्लांटे इस सबसे एंड एक्सरसाइज हो होला स्ट्रेस हो कमती होला और पैसों वो बचेला नहीं चाहेला जब रोपाई करवाता चाहेला बेचे हुए के नहीं अपन प्रॉप कंसोमेशन के तब इस सबसे जब अपन आगे के आदमी जब देखबा तब जाता रंग सा कान में काम करे तो हो जैसे भाजी उठैले आवल रंग सा मालवा के भाजी कौन कौन भाजी तो ये सब चीज नहीं किना था रंग सा तब उन लोग के अपन बचत करे में जस्ती सहायता मिले अब तक देखला सा सब चीज किनाला सब चीज आदमी लोग जाला किने कारी पुलोए वो जाला सब किने
1: हाँ ये बेचे जा
2: हाँ तो बेचे के जे बेचे ला तो बेचबे करी तू जा तो के चाहेला जाने के कैसे खरीदारी करब का चाहेला किने के का नहीं चाहेला किने के सकब एगो जैसे एगो पौती बाती था हाँ बोलवा हाँ हाँ थोड़ा जस्ती किन ले रहा है महीना तो हो महीना थोड़ा जस्ती बजट के ध्यान में रख के खरीदारी करे के तो लालिस पोतो आगे आगे के आदमी हमार माँ बोले कौन राशियों आगे सब कोई लगे एगो कौन राशियों रहल तब कौन राशियों में लिखा था रंग सा हर महीना के का ले ली ओ हाई ओ प्लीज बातें तो हो महीना के नहीं ले तब तीसरा महीना में देखब कौन चीज बचल बा कौन चीज नहीं बा तब फिर से लालिस करब तब जब किने अब तो आदमी लोग लालिस नहीं करे लंग सा जैसे भाई जी बोला था लेता हुए नहीं बातें ये सब लालिस करे के तो जा लंग सा सुपर मार्शे में दूगो चीज किने के दस गो बारह गो चीज उठा के चलाओ लंग सा तो इस सबसे लोग के बीच से डिस्टर्ब हो जाला तो यही से बोले लंग सा तब पैसा नहीं बचेला
0: जैसे बोला लेगीम के फ्री का है मोहते होला पर प्लांटर एक कमती हो गल बा अब सब आदमी लोग बीओ में काम करेला तब कमती हो पाता नुमाम जब एक गुजाफे कमती होला और डिमांड जैसे है तब फ्री मोहते होला तो हवे का आदमी को हाज के ना एक जैसे चीचे लेगीम फैम प्लांटे के जाए ना आदमी के लेता नहीं मिला तो चिजू पाजा एगो एगो एगो ऑक्यूपेशन रही एगो एगो हॉबी रही प्लांटे के तो ऐसे कर बता मोरिस सब चीज़ में दीपान होला ऐप उताशो में ना तो फ्री तो मोटे भी करी जब एगो आदमी अपन देखा लेगीम आगे लेगीम हम ही जाए ना ढेर कमती रहल अब तो ढेर मोटे करवा थोड़ा सैंक शिशवा मोटे हुआ का है जब प्लांटे नहीं बा कोई लाते में काम कर होता सब कोई बीहो में करता तब और ढेर को बीहो में करता कमती आदमी पहुँचता था कुलता कमती बा तब फिर तो मोहते होता तो हर आदमी को बोला लेगीम क्या है मोहतला लेगीम कंट्रोले नहीं है जब बोला सर लेगीम कंट्रोले नहीं है तो हर फिर मोहते होला डाक के तो कबो पानी आवेला कबो घमा रहेला कबो देबूद मा रहेला तब फिर अफेक्ट करेला तो हर का दिन हर में बोला कि बीजवा ऐप होता सब चीज़

0: तो आज की जो युवा पीढ़ी को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो लोग कैसे लेवल कैसे आपके देखे में वो लोग कैसे
1: जैसे जैसे तालिबा बोलिए लड़का लोग अपन पहाड़ों के देखेला कैसे करते कम छोटा होता तो वो लाज आवेल जैसे जाना सब युवा पीढ़ी सब कोई सोशल मीडिया में होता ऑनलाइन शॉपिंग कर सी तो उनके छाना कहूँ से कोई पैसा मेके था कि नहीं के तो पापा पहाड़ों ने कुछ खेला और लोग कौन खोल दे बेला ओके पैसा लाइल सर बोलो वो लोग पैसा लेके सब चीज़ किनार कर सर कहो वो कौन थोड़े वो लोग नहीं जान सर कुछ है बजटिंग कुछ है वो लोग जिस इम्पल्स कर सर हाई ट्रेन बा हाउ ट्रेन बा तो है कि हिला सब तो हमें पाहूँ के वो कुछ कर लाइक वाले पैसा नहीं जो है जो अपन हाई पॉकेट मनी है जो है चीज किन अब आज के अलग अलग तेनी सुनी कैसे बोलते हैं इम्पल्सिव हो सब हाँ जा पाया चाहे हम कि नहीं देवे तो पाहूँ तो ये डॉप्लास कुछ ठीक कर दे पिता पैसा ले जो किन है जाफा तो है कि कैसे बोलते हैं हाई एफेक्ट ही करेगा वो लोग के फासों को चीज किनी जाते हैं लोग नहीं जाते हैं कौन सी कौन सी कौन सी इन्वॉल्व बन रहा है किनी खाई कि वो फौजी खाते तो भाई ऑनलाइन जब करे लग सर तो पौफा ऑनक में हिल जाऊँ सर ना तो वो लोग नहीं जाए लग सर हाई आदमी लोग से बोल सर कि देखे कि सब चीज़ नहीं जाके उठा के चलावा ऑनलाइन भी जाता कि न थी तो हवे खातिर युवा पी लोग उन लोग के चाहे ना जाने कैसे अपन कैसे पाहों और चाहना ऐसे लड़का लोग कैसे को प्रॉब्लम होला तो आज के लड़का जाए ना कैसे
0: आप लोग देने से कोनो सबक में जाए कुछ करे लोग के जाना है किस पाले कुलवे में
1: आगे में आगे हाल ही में लिकुल में जाती सर कंज्यूमर एजुकेशन करे अब जब मान एफ मास्टर जे साइंस नेशनल कैंपेन करे लड़का लोग के लिकुल में सेतु बन फोम से का लाओ और फोम तो फोम जी फोम तो होला कर रहे हैं सर लिकुल में कर रहे हैं सर बोल रहे सर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बोल रहे हैं सर उन लड़का लोग बोला हाँ लोग ऑना खुलवा फौजी किन्नों से नहीं मिल बा पापा भाई किन्नों से नहीं अच्छा बा नहीं आते कुछ यहाँ करके लोग धुआ भी नहीं आएगा कुछ एगो पोता किन्नों से नहीं आया सर सपोर्ट अब तुथी तो सर लाल बाबा पोते से बनाए के गाँव छे मैं लोग नहीं जाए सर तो फिर कहीं लोग किने लग से दाप गए वो लोग के ग्रुप एगो ग्रुप है ग्रुप के फ्रेशों में ए हाई किन हाई किन वो लोग नहीं जा रहे नहीं भी जावा लोग से फ्रेशों में किन दे सर तो फिर प्रॉब्लम आप गए
0: तो वही हम लोग ये जानना चाहेंगे हमारे जितने श्रोता दर्शक हम लोग की सुन रहे हैं उन लोगों के जो बजट कैसे होला उन लोग के अनुभवी हवन सर तो आप लोग कौन चीज बोलवा उन लोग कैसे कैसे अभी ये भाई जी बोला कि साले सब कोई के बराबर नहीं है तो कोनो सुझाव
1: जैसे जैसे जैसे सुबह मौसम जाना सर वो कहते दूध की ना सर तब जाना सर देखे सर दूध मौत खुलवा तो वो और इतना अच्छी बात सर वो काम वो दाम कम थी बा बजट के हिसाब से तो हाई से कहीं से हाई पहुँच हुआ मैं गाँव गाँव के पास नहीं चला भागे की मैं तो और इतना अच्छी खोजे नहीं बच्चे नहीं चला कि नहीं क्या बच्चे तो बीजे के हिसाब से एडजस्ट करके चाहे ला देखे कि हाई पहुँच हुआ सही किया सर क्या सही कही था जैसे बोला सर ऐसे ऐसे दे ला दुखती ऐसे कही था आदुपती कहीं पहुँच जाते ओके हाई पहुँच जाते कम थी मिला पाक मैंने प्रमोशन सब रहेला सर अभी ने पहुँच गया प्रमोशन किन के रख दिया जब आपको प्रमोशन नहीं मिली जहाँ जाने की कौन फौजी में किने सर देखो सर फौजी की एक्सपायर की डेट देखे के चाहे एक्सपायर को फौजी ली अच्छे आप फौजी झीले के दूध के जैसे भाई को फौजी किन के रख दे आप एक्सपायर एक समय में तो प्रॉब्लम हो जाए तो कोई बीजे चलाए देखे चाहे कौन फौजी में कौन सेवी हरूद की जैसी कैसे लेका को लेकर जला सिपा फोमाज आए रंग सा सिपा बर्गर आए रंग सब अपना चाहे देखे के कौन सी किनार चुन कौन सी इस्पारी है उसके हिसाब से करके वो फौजी सब किन के रख दे ओके इस्पारी दे तो नहीं लंबा है तो रख दे बस सबसे सेवी के लिए 6 महीना नहीं किन तो बीजे में आज से जला
0: तब एक प्लान जरूरी है करे के कौन चीज बोल
2: सब चीज में एक प्लान जरूरी है देखे के चाहे ला कुछ चाहे ला किने के आगे और ये प्रमोशन जैसे भाजी बोलक प्रमोशन वो देखे के चाहे ना फौजी को मिस्टिप जैसे बोले सा खान पान के फौजी में जस्ती आतंशों करे के चाहे ना बस ये सब में एगो एक्सपायरी डेट बा नहीं सकब एक से आगे सेवी करे लेकिन दूसर तरफ जैसे लेका लोग के काये बा देखबा प्रमोशन बाते तो कायवा थोड़ा किन के ज़्यादा रख दे बा तो भर बरिस मिली सेवी करे के चाहे ना जाने के का किनब काहे किनत हो और अब कोनो चीज किन लेब कबो नहीं सेवी करत हो तो एगो वेस्ट ऑफ मनी हो गल पैसा बेकार में चल गल इस सब चीजवन के ध्यान में रख के निमन से एगो बजट करब एगो प्लान करब एगो लालिश करब तो लाफे जुम्मा देखब तोहर लाफे जुम्मा निमन से पासे होल
0: और कल जैसे शुरू शुरू में मैंने कहा कि

0: 15 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं, तो एक दो शब्द इसके ऊपर
1: परिवार सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इम्पोर्टेंट जहाँ देखबा तो परिवार जहाँ टूटल परिवार बाते तो बहुत प्रॉब्लम होला। देखबा लड़का लोग लेकुल नहीं जाता, लेकुल छोड़ दे होता बुनेर बे जैसे बोलेंगे सर लेकुल कापे होता सब में सब स्टैटिस्टिक दिखावेला कि टूटल परिवार में ये सब प्रॉब्लम जस्ती होला। तो जी के एगो परिवार जब इनी है माँ बाप लड़का लोग माँ बाप के सुनत हो माँ बाप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन फुलफिल करत हो निमन से बड़ा आदमी लोग के निमन से देखत हो माँ थ्रेते नहीं करो ये सब चीज़ लड़का लोग सीखेला। जब वो लोगों बड़ा होला तब पारे करेंगे सर। तो हमार विचार में माँ बाप एक इम्पोर्टेंट फीचर है एगो फैमिली में। जैसे जैसे माँ बाप करी वैसे वैसे लड़का लोग स्वीप करी और माँ बाप के बीच तनाव रहेला तो लड़कों पर असर पड़ेगा दिखेंगे। तो लौकेला स्टैटिस्टिक में देखना लड़का लोग के लेजिकाशों अफेक्टे होला ये सब चीज़। तो हमार विचार में परिवार के
2: लड़का देखला कुछ न करके जब हमनी जैसे फैमिली वही तो फोमिया कौन से माते जाते जब सब चीज जैसे खान पान इलेक्ट्रिकल सब चीज किनी लग सर तब कुछ होला। जब हमनी कौन से माते के फोटी से कहला सर तो अंदर को फैमिली में फोटेज ला ऐसे हिसाब आवेला संगे जब उनके हिसाब फोटेज के रास्ता तब कंस्यूमर प्रोटेक्शन दाई ला सा तब उनके बीजे फोटेज होला जाने से कुछ ना करके तब फैमिली में वो कर पाजे हाउ अमुनि रहेला प्रॉब्लम नहीं होला। प्रॉब्लम नहीं होला कोई फिनेंशियल बस फिनेंशियल को ग्रांड अफेयर पू फैमिली होले करके
0: बिल्कुल
2: दिने रही तब प्रॉब्लम हो जाए लड़का के लिए सर के लेसन से पे करे अपन बिल सबसे पे करे तब हाई तब जेहे तब निमन से तो कर
0: आज की चर्चा। इस प्रोग्राम से हमें ये समझने का अवसर मिला कि सही बजट नियंत्रित खर्च और समझदारी से लिया गया तो आर्थिक निर्णय परिवार को सुरक्षित और खुशहाल बना देता है। हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी और श्री रणवीर सिंह मिथु जी, आपकी इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत, जिम्मेदार और खुशहाल बनाएंगे। तो याद रखिए परिवार की सबसे बड़ी पूंजी आपसी विश्वास और समझदारी से होती है। तो ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। कादेर, शिव, दीपशिखा और रितेश को धन्यवाद देते हुए और आप सभी श्रोताओं जो हमने सुना, भाग लिया, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार और आदाब।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई और अफसरों ने पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जरूरी कदम उठाए। मॉरीशस में कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ाने के संदर्भ में एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। अधिकारी एक बहुत ही अहम फैसला लेने जा रहे हैं ताकि नए नियमों को लागू किया जा सके। मकसद स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस संदर्भ में यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि इस परियोजना पर विचार विमर्श किया जा सके। रेजी में अनुसंधानकर्ताओं और इतिहासकारों ने एक सत्र में हिस्सा लिया। इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट सम्मेलन में उन्होंने अपने अपने ख्याल पेश किए। प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इतिहास, विरासत और भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की कहानी पर जोर दिया गया। विदेश में भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि स्थानीय ज़रूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखा जा रहा है। इसके अलावा दाम पर असर से बचने के लिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides.
4: RM2, Radio Mastery.

मस्तानी और रंगीन शाम है आज गुरुवार 14 मई 2026। एक बार फिर स्वीकार कीजिए अपने हौसला दोस्त आज प्रताप सिंह से तालुका प्यार भरा नमस्कार। शाम के 4:03 रेडियो मनोरंजन पर आपका स्वागत। कुछ रोमांटिक तराने दिल से मिले दिल कार्यक्रम में अभी से लेकर शाम के 5 तक रोमांटिक गीतों की महफिल है ये, और एक से एक बेहतरीन प्यार भरे मीठे मीठे तराने हम लाए हैं सभी प्यार करने वालों के लिए। ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी 1920 एविल रिटर्न्स, महालक्ष्मी की आवाज, खुद को तुझमें समाने लगा हूँ। प्यार का असर, प्यार का नशा जब सर पे चढ़ के बोलता है तो ऐसा ही होता है।

प्यार क्या चीज है कोई तो हमें बता दे क्यों प्यार में लोग हंसते हैं तो कभी लोग रोते हैं प्यार में कभी कभी दिल टूट भी जाते हैं कभी दिल आबाद भी होते प्यार का दूसरा नाम ही है कभी किसी पर मर मिटना कभी किसी पर सब कुछ कुर्बान कर देना इसी का नाम तो प्यार है हाँ यही तो प्यार है यही तो प्यार है।

सच में लोग कभी-कभी प्यार में पागल हो जाते हैं दीवाना हो जाते हैं इसलिए तो उसका नाम अपने हाथ पर लिखकर चूम रही है क्या बात है ऐसी भी दीवानगी क्या कि उसका नाम हाथों पर लिखकर चूम रहे और उसको याद कर रही है प्यार का सर इतना है कि बस उसी का नाम हाथों में लिखा है और वो भी मेहंदी से रचा है और मेहंदी से लिखा ये नाम दिल को बहुत अच्छा लगता है नाम अगर हाथ पे लिखा है तो दिल पे भी लिख दीजिएगा शायद आपके दिल पर उनका नाम अगर आ जाए तो वो आपके समीप आ जाए

प्यार करने वाले अक्सर प्यार के गीत गाया करते हैं। कौन रोक सका है प्यार करने वालों को जो अब प्यार करने वालों को रोकेगा। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, और प्यार करने वाले अपना दिल का पता उसे ही देते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। कुछ इस तरह से

दिल नेक हो, दिल साफ हो, सच्चा प्यार हो, तो प्यार करने वाले मिल ही जाते हैं। आज नहीं तो कल अगर उनका मिलना होता है तो किसी न किसी हाल में मिल जाते हैं। इस जन्म ना सही, अगले जन्म ही सही, प्यार करने वाले अगर मिल जाए तो क्या बात है।

इश्क का कुछ ऐसा हुआ असर, इश्क का कुछ ऐसा हुआ असर कि वो अपना नाम ही भूल बैठा। और नाम जब अपना भूल बैठा है तो बस वो उसी का नाम अपने नाम से जुड़ा हुआ है इस तरह से।

इस शाने करम का क्या कहना और इस गीत का क्या कहना, दिल को छू देने वाला तराना, दिल को दिल की तारों को झकझोर देने वाला तराना, क्या बात है। कच्चे धागे फिल्म से रह गया और दिल से मिले दिल कार्यक्रम को जारी रखते हैं। दिल में सनम की सूरत हो, होठों पे उसका नाम, इससे ज्यादा और क्या चाहिए सच्चे आशिक को।

हम प्यार है तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे और इसी गीत के साथ ही रोमांटिक गीतों की महफिल दिल से मिले दिल यहीं पर समाप्त होता है 5 बजे होगा अगला प्रोग्राम हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी शाम के 4 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया इसके धन्यवाद हमारी आपकी मुलाकात होगी शनिवार की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक MBC रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना प्रोग्राम में और एक मुलाकात तक हमें दीजिए इजाजत और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार बाय बाय लव यू गॉड ब्लेस

0: नमो नमः सर्वेभ्यः। जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम में पुनः एक बार कीर्ति और सुरभि अपने हृदय तल से आप सभी का स्वागत करती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से।
1: सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: अमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, आज हम आपको सर्वप्रथम भवान और भवती इन दो सर्वनामों से परिचित करवाएंगे। भवान का अर्थ है आप पुल्लिंग में, और भवती का भी अर्थ है आप किंतु स्त्रीलिंग में। तो आइए अब हम इनका प्रयोग देखें।
0: भवान पुस्तकम पठति। भवान पुस्तकम पठति। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। भवान कुत्र गच्छति। भवान कुत्र गच्छति। आप कहाँ जा रहे हैं। भवान किम लिखति। भवान किम लिखति। आप क्या लिख रहे हैं। भवान अध्यापकः अस्ति। भवान अध्यापकः अस्ति। आप अध्यापक हैं। अस्ति का अर्थ है

0: हैं, भवान देवम नमति, भवान देवम नमति, आप देव को नमन करते हैं, भवान शीघ्रम चलति, भवान शीघ्रम चलति, आप तेज चलते हैं, भवान मधुरम वदति, भवान मधुरम वदति, आप मीठा बोलते हैं, भवान किम खादति, भवान किम खादति, आप क्या खा रहे हैं, भवान चायम पिबति, भवान चायम पिबति, आप चाय पी रहे हैं, भवान मोदकम खादति, भवान मोदकम खादति, आप लड्डू खा रहे हैं,
1: भवती शिक्षिका अस्ति, भवती शिक्षिका अस्ति, आप शिक्षिका हैं, भवती देवालयं गच्छति, भवती देवालयं गच्छति, आप देवालय जाती हैं, भवती पत्रम लिखति, भवती पत्रम लिखति, आप एक पत्र लिख रही हैं, भवती शीघ्रम न चलति, भवती शीघ्रम न चलति, आप तेज नहीं चलती हैं, किम भवती अपि मोदकम खादति, किम भवती अपि मोदकम खादति, क्या आप भी लड्डू खा रही हैं, भवती अतीव मधुरम वदति, भवती अतीव मधुरम वदति, आप बहुत मीठा बोलती हैं, भवती उष्णम दुग्धम पिबति, भवती उष्णम दुग्धम पिबति, आप गरम दूध पीती हैं, भवती ईश्वरम नमति, भवती ईश्वरम नमति, आप ईश्वर को नमन करती हैं, भवती मधुरम फलम खादति, भवती मधुरम फलम खादति, आप मीठा फल खा रही हैं, किम भवती पत्रम लिखति, किम भवती पत्रम लिखति, क्या आप पत्र लिख रही हैं, तो श्रोताओं ये हो गया भवान और भवती सर्वनामों का प्रयोग। आइए अब एक गीत का आनंद उठाएं और 1 से 10 तक की गिनती सीखें।

0: श्रोताओं, पिछली बार एक वार्तालाप के माध्यम से हमने आपको बताया था कि आज गुरुवार है। यदि इस वाक्य को संस्कृत में कहना हो तो कैसे कहेंगे? आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखें कि कल क्या दिन होगा और बीता हुआ कल क्या दिन था। तो ध्यान से सुनिए। अद्य गुरुवासरः अस्ति। अद्य गुरुवासरः अस्ति। आज गुरुवार है। श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। कल शुक्रवार होगा। ह्यः बुधवासरः आसीत्। ह्यः बुधवासरः आसीत्। कल बुधवार था। यहाँ पर हमने सीखा कि भविष्यति का अर्थ है होगा और आसीत का तात्पर्य है था। श्वः और ह्यः दोनों का अर्थ है कल, लेकिन श्वः का अर्थ है आने वाला कल और ह्यः का तात्पर्य है बीता हुआ कल। तो श्रोताओं, आइए अब हम एक छोटे से संवाद के माध्यम से इसको भली भांति समझें। सुरभि, यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः दिवसः भविष्यति?
1: यदि अद्य सोमवासरः तर्हि श्वः मंगलवासरः भविष्यति।
0: शोभनम्। यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः दिवसः आसीत्?
1: यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि ह्यः रविवासरः आसीत्।
0: यदि अद्य मंगलवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः दिवसः भविष्यति?
1: यदि अद्य मंगलवासरः तर्हि श्वः बुधवासरः भविष्यति।
0: यदि अद्य मंगलवासरः तर्हि ह्यः कः दिवसः आसीत्?
1: यदि अद्य मंगलवासरः तर्हि ह्यः सोमवासरः आसीत्।
0: श्रोताओ, इसी प्रकार आप लोग भी दिनों के नाम को लेकर अपना प्रश्न बना सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। आइए अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक का पाठ करें। आप एक बार हमें ध्यान से सुने, उसके बाद हमारे साथ दोहराएं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्।
1: दृष्ट्वा

0: संगम य राजा वचनम ब्रवीत।
1: इस बार पूरे श्लोक को सुनकर उसके बाद दोहराइए। दृष्ट्वा

0: अब्रवीत।
1: दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत।
0: प्रस्तुत श्लोक में धृतराष्ट्र के सारथी संजय अपने स्वामी से कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा।

0: प्रिय श्रोताओं, अद्यतन कार्यक्रम के इस अंतिम भाग में आइए संस्कृत में एक लघु कथा का आनंद उठाएं। कहानी का शीर्षक है सिंह मूषकयोः मैत्री, शेर और चूहे की मित्रता।
1: एकस्मिन् वने एकः सिंह निवसति स्म। किसी एक जंगल में एक शेर रहता था।
0: एकदा सः वृक्षस्य नीचैः संतोषेन सुप्तः आसीत्। एक बार वह पेड़ के नीचे संतोषपूर्वक सोया हुआ था।
1: कोपी मूषकः तत्र आगत्य तस्य शरीरे इतस्ततः अनृत्यत। कोई एक चूहा वहां आकर उसके शरीर पर इधर उधर नाचने लगा।
0: एतेन अकस्मात् सिंहः उत्थितवान्, मूषकं गृहीतवान् च। इससे शेर अचानक जाग उठा और उसने चूहे को पकड़ लिया।
1: रे मूर्ख मूषक, किमर्थं मां पीडयति? अधुना अहं तं मारयिष्यामि, खादिष्यामि च, इति सः कोपेन उक्तवान्। वह गुस्से से बोला, अरे मूर्ख चूहे, मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और खा जाऊंगा।
0: यदा सिंहः स्वस्य मुखस्य समीपे मूषकम् आनीतवान्, तदा मूषकः भयेन प्रार्थितवान्। जब शेर चूहे को अपने मुंह के पास लाया, तब चूहा भयभीत होकर विनती करने लगा।
1: भोः सिंह, मयि दयां करोतु, कृपया मां मा मारयतु, आपत्काले अहमपि भवतः निश्चयेन साहाय्यं करिष्यामि। हे शेर, मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझे मत मारिए, आपत्काल में मैं भी निश्चित रूप से आपकी सहायता करूँगा।
0: एतद् आकर्ण्य सह सिंहः हसन उक्तवान्, त्वं क्षुद्रः दुर्बलः जन्तुः, अहं तु अरण्यस्य बलिष्ठः राजा। यह सुनकर वह शेर हंसते हुए बोला, तुम एक तुच्छ दुर्बल प्राणी हो, मैं तो जंगल का बलशाली राजा हूँ।
1: त्वं कथं मम सहायं कर्तुं शक्नोषि? तथापि अहं त्वां त्यजामि, गच्छ गच्छ। तुम कैसे मेरी सहायता कर सकते हो? फिर भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ जाओ।
0: एवं किंचित विचिन्त्य सिंह दयया मूषकम् अमुचत। इस प्रकार थोड़ी देर सोचकर शेर ने दया करके चूहे को छोड़ दिया।
1: मूषकः सत्वरं ततः पलायनं कृतवान्, चूहा तुरंत वहां से भाग गया।
0: एकस्मिन् दिने यदा सिंहः वने विचरितवान्, तदा सः व्याधस्य जाले पतितवान्। एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था, तब वह शिकारी के जाल में फंस गया।
1: सः जालात् स्वतन्त्रयम् प्राप्तुम् बहु प्रयत्नम् कृतवान्, तथापि सः अशक्तः। उसने जाल से स्वतंत्र होने के लिए बहुत प्रयास किए, फिर भी वह असमर्थ रहा।
0: सिंहः दुःखेन उच्चैः अगर्जत्। शेर दुखी होकर ऊंची आवाज में गरजने लगा, दहाड़ने लगा।
1: मूषकः सिंहस्य गर्जनं श्रुत्वा समीपम् आगतवान्। शेर की गर्जन सुनकर चूहा उसके पास आया।
0: मूषकः शीघ्रमेव स्व तीक्ष्ण दन्तैः जालम् अकर्तयत्। चूहा तुरंत अपने तीक्ष्ण दांतों से जाल को काटने लगा।
1: एवं सः सिंहः जालात् मुक्तः अभवत्। इस प्रकार वह सिंह जाल से मुक्त हो गया।
0: प्रसन्नः भूत्वा सः स्वतंत्रः सिंहः मूषकं विनयेन अवदत्। हे मूषक, भवान् तु लघुः अपि वरम्। खुश होकर उस स्वतंत्र शेर ने चूहे को विनम्रता पूर्वक कहा, हे चूहे, आप छोटे होकर भी श्रेष्ठ हैं।
1: अधुना अहम् अवगच्छामि यत् लघुः जन्तुः अपि उपयोगी भवति। अब मैं समझ गया हूँ कि छोटा जीव भी उपयोगी होता है।
0: तदा आरभ्य सिंहः मूषकस्य मित्रम् अभवत्। तब से सिंह चूहे का मित्र बन गया।
1: मित्रद्वयं वने सुखेन अजीवत्। दोनों मित्र जंगल में सुखपूर्वक रहने लगे।
0: इस कथा का नीति संदेश इस प्रकार है, कदापि कमपि कथमपि न अवमन्तव्यः। कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो श्रोताओं, यहाँ पर हम समाप्ति की ओर पहुँच गए हैं। आइए शांति मंत्र पढ़ें।
2: ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
3: नमो नमः सर्वेभ्यः। आगामी गुरुवासरे पुनर्

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जय सियाराम। इस समय मॉरीशस में शाम के 5:26 हुए हैं।
4: राम रसधारा
3: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। रामरस धारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में चार बहनें उपस्थित हैं जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज जी जय सियाराम।
5: जय सियाराम भाई जी।
3: शिवानी जी जय सियाराम।
6: जय सियाराम गुरु जी।
3: सीता माता जय सियाराम। सिमरन जी जय सियाराम। सो आज की इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की और श्री हनुमान जी की स्तुति के साथ। जय सियाराम।
5: जय सियाराम।

0: राम रसधारा ये प्रोग्राम हर गुरुवार की शाम को चलता है 5:30 से लेकर 6 बजे तक और आप सबों का इस आज के सत्संग में पुनः स्वागत है। जय सिया राम श्रोताओं, पिछले गुरुवार को हमने तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण और सुमिरनी का गायन आप श्रोताओं को सुनाया था। आज हम स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों के साथ बालकांड की पहली चौपाइयां और पहला दोहा सुनाएंगे। जय सिया राम।
1: जय सिया राम।

0: रसधारा
1: रसधारा
2: जय सियाराम श्रोताओं, बालकान के इस प्रथम चौपाए और दोहे में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे श्री हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में वे लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। तो इन चौपायों में बंद गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अम्य मुरी मय चरण चारु, समन सकल भव रोज परिवारु। अर्थात अपने गुरु के चरण कमलों के धूल को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने माथे पर लगा रहे हैं, जिसे कि वो इस भवसागर को पार कर पाए।

0: रसधारा
1: इस समय मॉरिशस में शाम के 5:48 हुए हैं और आप रेडियो मनोरंजन की लहरों पर सुन रहे हैं राम रसधारा भाई संजय के साथ। देवी और सज्जनों, ये पूरा का पूरा मई महीना हम मातृओं को समर्पित करते हैं, उनकी सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज हमारे स्टूडियो में चार माताएं उपस्थित हैं। और चले आज हम बालकान के इस पहले दोहे का गायन सुनते हैं और उसका भावार्थ सुनते हैं बहन शिवानी की वाणी में। जय सियाराम।
2: जय सियाराम। जठा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूर निधान। जय सियाराम। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। जय सियाराम।

0: रसधारा
1: देवी और सज्जनों, आपने बहुत ही भक्ति भाव से, प्रेम भाव से हमारे सत्संग का श्रवण किया। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। सो इसी के साथ ही आज का हमारा राम रसधारा ये प्रोग्राम यहाँ पर, ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होने को चला। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित चार बहनों को, माला जी, शिवानी जी, सिमरन जी और सीता जी को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। देवी और सज्जनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार आदाब, ठीक 6 बजे हैं। सबसे

0: पहले आज की सुर्खियां, मुर्शिद के ज्यादा कमजोर परिवारों को किस तरह पहचाना जाए, सोशल रजिस्टर में एक सुधार लाया जाएगा, समाज सुरक्षा मंत्रालय के तहत योग्यता के मापदंडों को बढ़ाया जा रहा है। करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई जिसके जरिए पानी के गैरकानूनी इस्तेमाल के खिलाफ जरूरी कदम उठाए गए। ओसबल की रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट में पहली सर्जरी कामयाबी के साथ की गई। एक भाई ने अपने किडनी देकर अपनी बहन की जान बचाई। इस ऑपरेशन में दोनों मोशन और विदेशी डॉक्टरों की महारत रही है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत मुर्शिद में कीटनाशकों के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू। हुकूमत अपने साझेदारों को एकत्र कर रही है। और भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू। इसके पीछे वजह ये है, स्थानीय जरूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखना चाहिए। नमस्कार, आदाब। इस बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मुर्शिद के ज़्यादा कमज़ोर परिवारों को किस तरह पहचाना जा सकता है, इनके लिए एक सोशल रजिस्टर है और अब इस रजिस्टर में सुधार लाया जा रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। योग्यता के मापदंडों को बढ़ाया जा रहा है ताकि ये परिवार सुविधाओं से लाभ उठा सकें और अपनी ज़िंदगी सहल तरीके से गुजार सकें। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण पेश है।
1: गिरे हुए पर्दों के पीछे बिना सच जाने फैसला सुना देने वाले नजरों से दूर ऐसे परिवार भी हैं जो खामोशी में बेहद कठिन संघर्ष लड़ रहे हैं। सफिनाज और सुल्तान 7 बच्चों के माता पिता हैं। पहले सफिनाज रोटियां बेचती थी और सुल्तान टैक्सी चालक थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन सम्मानजनक। फिर एक सड़क दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। आज सुल्तान काम करने में असमर्थ है, वहीं सफिनाज अपने कमजोर लेकिन मजबूत इरादों वाले कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। पति, बच्चे और आर्थिक व मानसिक दबाव से भरी जिंदगी। सुल्तान की विकलांगता पेंशन डॉक्टरों के फैसलों के अनुसार कभी मिलती है कभी रुक जाती है। जीवन यापन और परिवार चलाने के लिए इस दंपत्ति ने सामाजिक रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया है।
2: La madame il a fait application. Il trouvait qu'il nous capable nous bénéficier ça nous tombe de NEF.
1: हर महीने नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक अधिकारी उनके घर पहुंचता है निगरानी और सहायता के लिए।
3: Nous discutons avec eux, nous causons avec eux. Nous travaillons ensemble avec sa famille là. Quand nous réussit, bisanga sa confiance à la famille là. Après sa confiance là, nous essayons d'amener la famille là vers un niveau un petit peu plus meilleur pour qu'ils soient capables de sortir des problèmes.
1: सोशल रजिस्टर के पीछे एक पूरी व्यवस्था और निर्धारित मापदंड है जो यह तय करते हैं कि कौन सहायता पाने के योग्य है।
4: Critère d'éligibilité, nous avons un seuil de revenu premièrement qui est bien respecté. Pour une personne, c'est environ 3500 roupies qui est capable à jusqu'à 14650 roupies pour une famille de 3 adultes, 3 enfants.
1: इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 7000 परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8,50,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। सोशल रजिस्टर के तहत लाभार्थियों के साथ किया गया अनुबंध 2 वर्षों के लिए होता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल गरीबी हमेशा दिखाई नहीं देती, कई बार वह 4 दीवारों के भीतर बंद दरवाजों के पीछे खामोशी में जी जाती है।
0: विवरण अशिता रघु का रहा। 3 सालों से हर हफ्ता 3 बार डायलिसिस कर रही एक 16 साल की जवान को नई जिंदगी मिल गई। उसके बड़े भाई ने उसे एक किडनी देकर उसकी जान बचाई। मुर्शन और विदेशी डॉक्टरों की महारत की बदौलत ये सर्जरी हो पाई है। आज बेहतरीन स्थिति में रिनल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।

0: का रोजबेल की रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट में ये पहली बार है ये सर्जरी की गई जो कामयाब रही। और अन्य खबरों में करीब 20 सालों में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने 120 मिलियन रुपए प्राप्त किए। सन 2004 में स्थापित एंटी फ्रॉड यूनिट के तहत उसने कार्रवाई चलाई। इसके अफसरों ने पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाए हैं। गिजवी में अनुसंधानकर्ताओं और इतिहासकारों ने एक सत्र में हिस्सा लिया। इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट सम्मेलन में उन्होंने अपने ख्याल पेश किए। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इतिहास विरासत और भारत से आए गिरमित या मजदूरों की कहानी पर जोर दिया गया। दैविक राजकुमार अशिता रघु।
1: 1834 में भारत से मॉरिशस समेत पहले गिरमिटिया मजदूरों का आगमन हुआ था। कुल मिलाकर भारत से हुए गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवासन में लगभग 21 लाख लोग शामिल थे जिन्हें विभिन्न देशों में भेजा गया था। आज भी इस प्रवासन से जुड़ी शोध और अध्ययन का कार्य लगातार जारी है। करीब 5 लाख गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस आए थे। इससे मॉरिशस उन देशों में से एक बन गया है जहां सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर आए थे। उन्हीं मजदूरों की तरह कई रेनियन टापू, फीजी, गियाना इत्यादि देशों में भेजे गए थे। अतः इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट में जिन समुद्री रास्तों को तय करते हुए वे कहां कहां गए और बसे, इन सब की जानकारी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। हम विभिन्न देशों में बसे डायस्पोरा के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे इस डिजिटल डेटाबेस को सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे शोधकर्ता इन जानकारियों तक पहुंच पाएंगे। इस तरह जो लोग अपनी पुरखों का पता लगाना चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी। सरकार गिरमिटिया मजदूरों पर शोध के लिए इलाकाई स्तर पर एक उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार आप्रवासी घाट को कार्य जारी रखने में मदद दे रही है, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसे शोध केंद्र का होना आवश्यक है। इसीलिए हम मॉरिशस को आगे ला रहे हैं। मॉरिशस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास गिरमिटिया मजदूरों की 175,000 से अधिक पहचान तस्वीरों का एक अनमोल संग्रह सुरक्षित रूप से नेशनल आर्काइव्स में संरक्षित है।
0: मॉरिशस में कीटनाशकों का जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करना अधिकारी मुख्तलिफ साझेदारों के साथ मिलकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की हिफाजत करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत इस परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत ने फौरी असर के साथ चीनी के निर्यात को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। ये कदम 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि स्थानीय ज़रूरतों के लिए शक्कर के स्टॉक को रखा जा रहा है। इसके अलावा दाम पर असर से बचने के लिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया। दूरदर्शन की रिपोर्ट पर आस्था गोविंद चितामन का विवरण।
2: भारतीय सरकार ने कच्ची और सफ़ेद चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है या अगले आदेश तक ये रोक जारी रह सकती है। सरकार के अनुसार देश में चीनी उत्पादन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच घरेलू बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। इस वर्ष सरकार को उम्मीद थी कि उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहेगा और इसी आधार पर 15,90,000 टन चीनी निर्यात की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन अब प्रमुख गन्ना उत्पादक सेक्टरों में उत्पादन घटने के संकेत मिले हैं, जिसके कारण लगातार दूसरे वर्ष चीनी उत्पादन घरेलू खपत से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पीछे हटने से ब्राजील और थाईलैंड जैसे देश एशिया और अफ्रीका के बाजारों में अपनी आपूर्ति बढ़ा सकते हैं।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के औपचारिक दौरे पर गए हुए हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया और उनकी शान में हुनागर यानी मिलिट्री हुनागर की भी कतार लगी हुई थी। सब ने मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। इनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे।
2: बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य राजकीय स्वागत किया गया। सैन्य सम्मान, लाल कालीन स्वागत

0: और ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन की संयुक्त यात्रा इस मुलाकात के विशेष कूटनीतिक महत्व को दर्शा रही थी। करीब दो घंटे तक चली वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने बातचीत को सकारात्मक बताया, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन के बीच रचनात्मक, रणनीतिक और स्थिर संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि ताइवान का मुद्दा वार्ता के सबसे संवेदनशील विषयों में रहा। शी जिनपिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि ताइवान चीन अमेरिकी संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और यदि इसे गलत तरीके से संभाला गया तो ये खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चाएं हुई। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहना चाहिए। बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग भी प्रमुख विषयों में शामिल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क, टिम कुक और अन्य अमेरिकी उद्योगपति चीन में व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनके साथ आए हैं। विश्लेषकों के अनुसार ये शिखर वार्ता बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक तनाव के बीच दोनों महाशक्तियों के संबंधों को स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण कोशिश मानी जा रही है।
1: अमेरिकी सीनेट में ईरान में अमेरिकी ताकतों को निकालने के लिए एक मसौदे को ठुकराया गया। कई हफ्तों में डेमोक्रेट ने दूसरे मसौदे प्रस्तावित किए थे, लेकिन 49 वोट इनके पक्ष में थे और 50 खिलाफ। अमेरिकी संविधान के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को जंग छेड़ने का हक है। स्थानीय स्तर पर मॉरिशस के बच्चों और नौजवानों में ड्रग नोशी चिंताएं बढ़ा रही हैं। उनको इस बुराई के बारे में आगाह कराने के लिए ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने वीडियो बनाने का मुकाबला जारी किया। एमएफडीसी और दूसरे साझेदारों के सहयोग से 15 से 18 साल के नौजवानों को 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा। कैजिनो एम्प्लॉयज यूनियन ने क्यूपिप में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। मकसद मॉरिशस में कैजिनो को लेकर राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री की घोषणा पर टिप्पणी करना रहा। रियों बेल के एक बंगले में रूजबेल की आजसू ने कार्रवाई के दौरान 77 ग्राम से ज्यादा कोकीन को जब्त किया। कल इस बंगले की तलाशी ली गई, जिसके मालकिन जयंती देवी झगरू हैं। वो फिनिक्स से हैं और पुर्तगाल में रहती हैं। उसकी उम्र 41 साल की है। अभी वो मॉरिशस में है और उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग का अस्थायी आरोप लगाया गया है। एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। कोकीन की कीमत 1.1 मिलियन रुपए की बताई जा रही है।

आम हालत आज रात से कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25। साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:31 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें, आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार।

0: Arsenije.
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: पिया लावाल सेंट क्वा में 67 साल के 67 years old कुंवारी चंद्र सासी हवलदार कुंवारी चंद्र सासी हवलदार जो सासी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन की 11 बजे इनके घर पियालावाल सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM ला शापेल रोड मोंटाई ब्लांश में 41 साल की 41 years old श्रीमती जया बिसेसो श्रीमती जया बिसेसो पैदाइशी नाम चिकोरे जो मीनाक्षी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थी कल दोपहर के दो बजे इनके पति विशाम बिसेसो के घर ला शापेल रोड मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 2 PM रॉयल रोड पेलखन सेबास्टोपुल में 50 साल के 50 years old श्री रामजीत जगोरू जो जॉन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज शाम चार बजे इनके घर रॉयल रोड पेलखन सेबास्टोपुल से उठाई गई एवेन्यू मोंगिये बॉम्बू में 75 साल के 75 years old श्री ज्ञानदत्त बिहारी जो ओंगले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके घर एवेन्यू मोंगिये बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 10 AM लालमाटी में 82 साल के 82 years old श्री शिवनंदन बंजन जो शिव के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर बंजन लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडीमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 9:30 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: on NBC Play, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Musti.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:19 हो गए हैं।

इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं जी आप सब लोग? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन है। इस वक्त शाम के 6:26 हो गए हैं मेरे दोस्त, और नई सोच कार्यक्रम में दिल से आप सब लोगों को हम वेलकम करते हैं। और ऐसे टाइम पर एक ऐसा विचार लेकर आए हैं जहां पर सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, जो बात उन्होंने कही है वो तो बात तो बनती है। तो चलिए, हम आपका साथ देंगे यहां पर 9:00 तक का। इसका मतलब ये है कि शाम के 6:30 से 7:00 तक नई सोच कार्यक्रम, जहाँ पर हम आप लोगों के साथ बातें तो करेंगे, लेकिन उस टाइम पर आप डेडिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद 7:00 से लेकर के 9:00 तक, यानी कि पूरे 2 घंटों के लिए आप लगातार नियमित रूप से धराधर मैसेजेस भेजते जा सकेंगे ऑन 5250-6200। यू मे ऑल्सो कॉल इस ऑन 402-8070 पर। तो अभी के लिए एक गाना आप लोगों के नाम। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त शाम के 6:33 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेट मी इन्फॉर्म यू कि अगर आपकी जिंदगी में अगर पता है आजकल बहुत सारे लोग एक भागा दौड़ी जिंदगी जी रही है, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, टेंशन बहुत हैं, और ऐसे टाइम पर आप लोगों को खुद महसूस नहीं होता है कि एग्जाइटी फीलिंग हो रहा है या फिर एक बोर्डम उबाऊ जिसे हम कहते हैं। हम लोग बस काम करते जाते हैं मशीन की तरह, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो इंसान हैं। ब्रेक लेना तो बनता है, और ब्रेक लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो काम है वो रुक जाएगा या फिर आपके काम में कमी आएगी। नो, नॉट एट ऑल। टेक ए ब्रेक। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है उस आपाधापी जिंदगी में, वहाँ से निकल करके खुद अपने आप को महसूस करना, और साथ ही साथ एक बहुत ही लंबी सांस लेकर के कहना कि हाँ भाई, मैं तो जिंदा हूँ। और इस जिंदा दिल्ली को लेकर के हम आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम भी अपनी जिंदगी के जो मझधार के जो जहाज है ना, उसको हम नेविगेट कर पाएंगे। सो टेक ब्रेक। हाँ जी, आप ब्रेक लीजिए अपने जिंदगी से, अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबा लंबा ब्रेक लीजिए, नहीं, छोटा ही ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक लेना तो बनता है मेरे दोस्त।

जी हाँ दोस्तों, इस वक्त शाम के 6:51 हो गए हैं। आजकल सर्दी की जो भनक है वो महसूस हो रही है और शाम के समय में जो ठंड है वो अब महसूस होने लग गई है। और लोग कह रहे हैं, अरे आज स्वेटर तो निकालो ना, वो शॉल कहाँ है, वो

रहा है। अरे भाई आपने निकाला ही नहीं, दिखेगा कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हालात है आजकल हमारे घरों में। और कह रहे यार थोड़ा सा इसको बंद करो ना, खिड़की इतने खुले क्यों रख रहे हैं। नहीं यार उसको बंद करो, अब ठंड लग रही है। मुझे पता है इसी टाइम पर इस तरह की स्थितियां आ रही है सामने। कोई बात नहीं, ये इसी को कहते हैं ना मौसम, इसी को कहती है ऋतु। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। अगर आप घर की ओर जा रही है, ड्राइव कर रही है, सो ड्राइव सेफली ऑन रोड। अगर जहां तहां बारिश हो रही है, सो बारिश की बूंदों के साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक की बात हम लोग कह रहे थे ना, तो ब्रेक के बहुत तरीके के ब्रेक होते हैं। आप लोग एक ब्रेक ले सकते हैं जिम जाकर, आप एक ब्रेक ले सकते हैं जुम्बा करके, योगा करके, या फिर सुबह उठने के बाद आप लोग अपने आंगन में जा कर के, अपने जो विसिनिटी में पाए जाने वाले जो ग्रीनरी है वहाँ जा कर के आप एक बहुत ही आराम से इत्मीनान हो कर के जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जो विटामिन डी है सुबह का, खासकर जो सूर्य की जो किरण है विटामिन डी देते हैं सुबह सुबह, उसका लाभ उठाइए। लगेगा कि हाँ दिल खुश हो गया है। सो चलिए अगला गीत स्पेशली आप लोगों के नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर मिलाई जिस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

अगर आप मुस्कुराएंगे तो दर्द अपने आप में भाग जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार और आदाब। दिलों की आवाज कार्यक्रम में दिल से हम सब लोगों को वेलकम करते हैं। थर्सडे की रात है और ऐसे टाइम पर आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। वेल दोस्तों, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि अभी से लेकर के रात के 9 बजे तक का आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं ऑन 5250-6200 और आप हमें फोन भी कर सकते हैं ऑन 402-80-76 पर 402-80-76 पर। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे? यहां पर हम चलाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है लगातार आप फोन करते जा रहे हैं, लाइन नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं और सब लोगों की रिक्वेस्ट मैं लिखता जा रहा हूं और यहां पर ढूंढता जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल को मायूस करना चाहिए ना। मैंने आप लोगों का चेहरा नहीं देखा है मेरे दोस्त, लेकिन आप लोगों की आवाज़ सुनी है। अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, यहाँ पर चेहरे की बात हो रही है, मैं तो आवाज़ की बात कर रहा था।

क्या बात है जी। ऐसे गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक सुकून सा मिल गया। मैंने इन सभी गानों को आप लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट किया है, बल्कि आप लोगों के अपने खुद के चॉइस यहाँ पर हम चलाते जा रहे हैं। हेलो अभी, नमस्ते, दिस इज सरिका फ्रॉम कैट्रोबोन। प्लीज़ एक गाना हम चला देना मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, इस गाने की फरमाइश हम आपके नाम डेफिनेटली करने वाले हैं। नमस्ते अभी जी, आप कैसे हैं? बहुत बहुत प्यारे प्यारे गाने चला रहे हैं हमेशा की तरह। कहाँ हैं आप? अरे मैं तो स्टूडियो में हूँ। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि मैं एक फिल्म स्टूडियो में हूँ? नहीं यार, ऐसा नहीं है। फिल्म मन से एक गाना प्लीज़ मेरे नाम चला दीजिए। चलिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और उन्होंने कहा ये गाना जो है पतिराज, बेटे हैं अंतिश, अंकुश, बहू मनीषा, अशीमा, पोती हैं हिमेशा, आधिया, पोते हैं अंश, और साथ ही साथ दिस इज अनीता फ्रॉम फिकॉन्फ्ल।

क्या बात है। तो चलिए अगला गीत हम डेडिकेट करना चाहेंगे विक्रांत के लिए, जिस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। उन्होंने सपने मूवी से एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है। तो चलिए ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम भी हम चलाएंगे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको 90s बहुत पसंद है।

जहाँ बिल्कुल इस वक्त रात के 7:34 हो गए हैं। अच्छा ये क्या है, ये बहुत ही सुंदर मैसेज है, औजे हो तो ऐसा वरना हो क्या शो में है यार, मजा आएगा। हे अभियो, इट्स महन हियर फ्रॉम पाल्मा। हेलो अभी जी, थैंक यू सो मच मिस्टर महन, मेरे को अभी भी बता दिया है। चलिए प्यार से, पता है एमबीसी में एक ही बंदा है जो मुझे अभियो कहता है, अब एकदम से याद आ गया, एंड दैट्स हमारे बड़े भैया जिनका नाम है अरविंद बिसिसा। जब भी हम कैंटीन में मिलते हैं ना, अभियो की और है, मैं कहता हूँ ठीक है, एकदम से भाई अरविंद की याद आ गई, अरविंद बिसिसा। अगर अरविंद बिसिसा इधर उधर किचन में भटक रहा है या फिर गाड़ी चला रहा है, तो अगला गीत स्पेशली हम आपके नाम चलाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, अगला गीत स्पेशली हम महेंद्र के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो पाल्मा के रहने वाले हैं। वेटिंग फॉर यू दोस्त ऑन 5250-6200, यू मे ऑल्सो कॉल अस ऑन 402-8070 पर 402-8070 फॉर योर कार्यक्रम है दिलों की आवाज, जहां पर आप खुद हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे, हम यहां पर चलाएंगे जी।

पता है ऐसे पुराने गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस टाइम में ना उसका जो लिरिक्स था, उसका जो कंपोजिशन था, वो अपने आप में बहुत ही दमदार था। इस गाने की फरमाइश की थी संगीता फ्रॉम गांव बुआ, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। वो इस वक्त तक आ रही हैं, अकेली हैं, और उनको हम कहना चाहेंगे बोन अपेटिट, शुभ आहार आपको। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेहाना फ्रॉम फिनिक्स। उन्होंने कहा जालिला और जिहाद के लिए अगला गीत हो जाए। और वी डू हैव रीटा किसुंदियार फ्रॉम रुजबेल, उनके दो बेटों के नाम अखिल और व्योम्स। वी आल्सो हैव पति अजय। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों के नाम जो स्ट्रॉन्गली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड हियर वी गो।

फ्लोरा से हमें याद कर रही है। उनकी दो बेटियां हैं प्रश्नी और पुष्कर, उनके लवली हस्बैंड प्रवीण और उनके सभी बिसेस ऑफ फैमिली। इक्वली गोज आउट टू निधीश, व्योमिनी, जॉन वी, नव्या और बबीता के नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अपनी घड़ी मिला लीजिए, चेक आउट योर टाइम। इस वक्त रात की 8 बजे हैं।

ये सही है मेरे दोस्त, अगर सामने वाले प्यार नहीं दे रही है ना, तब जाकर के लगता है नहीं यार बन ये बात तो नहीं बन रही है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपना जिगर उसको दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो प्यार करने का फ़ायदा क्या है? दर्द तो बहुत होता है, दर्द को समेट करके हम रखते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये जो दिल है ना वो इतना नादान है कि समझता नहीं है, क्योंकि हमने उसको दिल दे दिया है ना, सामने वाले को वो समझ नहीं पाता है। और पता नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेरे दोस्त। हाँ हम लोग पहुंच गए हैं सेकंड आवर। नमस्कार और आदाब, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर दिलों की आवाज कार्यक्रम। अभी आपका साथ देगा यहाँ पर रात के 9 बजे तक। पता है मैं भी थोड़ा सा यू नो इस गाने के जो

कि जो अल्फाज है ना थोड़ा सा बह गया मैं भी। और कभी कभी ऐसा होता है ऐसे कॉलर्स हमें फ़ोन करके कहता है कि अरे यार मैंने सब कुछ दिया उसको लेकिन उसके बदले में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, प्यार भी नहीं दिया, ये होता है, यही ज़िंदगी है। और इसीलिए उस ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी लाने के लिए हम भी आ जाते हैं आप लोगों की खिदमत। रात के 8 बजे 9 बजे कभी कभी 10 बजे हो जाते हैं, लेकिन हम भी आपकी आप लोगों को थोड़ा सा साथ देने के लिए, सहारा देने के लिए हम भी पहुंच जाते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला गीत स्पेशली उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे जो रेडियो मनोरंजन से जुड़ गए हैं, ट्यून हो गए हैं रेडियो से। सो इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे वेलकम जी, थैंक यू सो मच।

And right now we do have भाई कवि from Rizbel, खासकर मुजलो लेन से उन्होंने कहा ये गाना उनकी दो बेटियों के लिए हो जाए. So here we go. Waiting for you on 52 50 6200 your messages.

That was गहरा हुआ from अरिजीत सिंह. मुझे लगता है ये ऐसी गीत है जहाँ पर मतलब that was the last song of the last songs जो अरिजीत सिंह ने गाया होगा, क्योंकि उन्होंने वैराग्य ले लिया है संगीत की दुनिया में, खासकर गायकी की दुनिया में. मुझे लगता है कभी कभी जिंदगी में जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, लेकिन जो हम हमें नहीं चाहते हैं वो ही मिल जाता है. अरिजीत सिंह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर जो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करें, उनकी आवाज़ हम मिस नहीं करेंगे. लेकिन बार बार जो गाने उन्होंने गाया है उन गानों को हम डेफिनेटली सुनेंगे. लेकिन दोस्तों, जो नई जो गाने सामने आ रहे हैं उनकी आवाज़ से हम नहीं सुन पाएंगे. क्या बात, क्या करेंगे यार, ये भी जिंदगी है ना. तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ पाई से जुड़ी है नंदा. उन्होंने कहा कि हीरा की तमन्ना का जो गाना है, पन्ना की तमन्ना, हीरा नहीं यार, हीरा वो ढूंढता है इस मूवी में. हाँ, पन्ना की तमन्ना का. चलिए, उन्होंने ये गाने की फरमाइश की है. अभिषेक, अविना, अविनाश, अशिल, हाँ अशिल और दिव्या की शादी हाल ही में हुई थी गत सप्ताह. सो बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं का गुलदस्ता पुनीता, सुरेखा और गणेश दे रही हैं.

चलिए यहाँ पर एक ऐसा गीत, एक ऐसा तराना आप लोगों की खिदमत हम पेश कर रहे हैं। सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि एक सुकून मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने की फरमाइश किए हैं बादल ने, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए लॉगिंग किया है बाय लॉगिंग ऑन free.mbcradio.tv। साथ ही साथ है तुषार ऑपरेटिव फ्रॉम दिल्ली।

जी हाँ दोस्तों, 90s एरा के जो गाने हैं अपने आप में बहुत ही दमदार होता है। थैंक यू सो मच कि आप ऐसे ऐसे गाने की फरमाइश कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ अवनीश हैं, उन्होंने कहा उनके लवली वाइफ उनके दो बच्चों के लिए ये गाना हो जाए। अवनीश ने कहा 90s के गाने जब चलते हैं ना तो अंदर से उसको कुछ तो खलबली हो जाती है। चलिए, खलबली तो पैदा हो गई है ये गाना खासकर आपके नाम अवनीश।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: दोस्तों इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ. बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हमारा साथ दिया. नेक्स्ट वीक डेफिनेटली हम फिर से मिलने वाले हैं. तब तक अभी को दीजिए इजाजत. नमस्कार और आदाब. विल मीट यू सून. बाय बाय.

0: के धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: रात के 9:04 होल बा ये बखत आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़ल हवा और किरण के सादर नमस्ते आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत बा। आज 14 मई है, 14 मई बीवे के दिन। देखते देखते माई के समर्पित ई मई महीना के आधा अंश गुजर गए और आधा महीना बाकी बा, तो चला ई आधा महीना के और ज़्यादा खूबसूरत बनाई जा और बोलल जला जोन विचार जोन बात रात के सोच के सुन के आप नींद में जाइबा तो अगला दिन वो साकार होवेला। तो चला आज अच्छा अच्छा बात अच्छा अच्छा विचार और संगीत के साथ हमने ये रात्रि के समाप्त करब जा। पहला गाना सुमन राम तोहर के आवाज़ में बहुत ही मशहूर आप सब कोई के मनपसंद चिमामा।

रात के 9:10 होल बा और 9 बजे से ही आप सबको एक फोन कॉल्स आए के शुरू हो गल बा आपके फरमाइश आए के शुरू हो गल बा अगला जन गीत चली लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए लता मंगेशकर के आवाज़ में उनकर साथ बा तलत महमूद और ई एगो फिल्मी गाना हा लेकिन भोजपुरी गीत और ई गीत के फरमाइश अक्सर मिलेला आज ई गीत सुने चाहत हवन विजय बेनी प्रसाद जय शामुनी से हवन और ई गीत आप अपन पूरा परिवार के नाम करत हवा और दूली परिवार मोहताबा से और ख़ास तौर पर शास्त्री बुनमाली जे आपके दोस्त हवन उनकर नाम और ई गीत के फरमाइश अक्सर आवेला अभी हमने के घोंगुप से सुनीता जी भी सुनत हवन सुनीता जी हमेशा के तरह अपन बहन विमाला के नाम गीत करेलन विमाला जी कोंगोमा से हवन तो विमाला जी आपके नाम भी आपके बहन सुनीता के ओर से और जितना कोई के ई मनपसंद गीत है जितना कोई ई गीत के मांग करे जा और आज हम पहला ई गीत चलावत है तो आप सब कोई के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ

0: भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में हमारे और आपके साथ रही रात के 11 बजे तक। ये वक्त आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन संगे जुड़ल हवा एमबीसी के ये दोनों चैनल पर हर रात के 9 से 10 बजे तक और फिर 10 से 11 बजे तक पूरा दो घंटा तक भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आपके पसंद पर चलेला, आपके फरमाइश पर चलेला और आपके फ़ोन कॉल्स जैसे ये कार्यक्रम शुरू होवेला आई के शुरू हो जाला। हमने के फ़ोन नंबर बताए कि तक कोनो ज़रूरत बा ही नहीं, लेकिन हमने के एगो व्हाट्सअप नंबर भी बा जहाँ पर सकबा आप मैसेज भेजे। ये व्हाट्सअप मैसेज में आपकी फरमाइश के हम ज़रूर चलावब और पढ़ब भी। और हमने के व्हाट्सअप नंबर है 5251700005 5 अगला जो गीत चली बिजमावती संपत की आवाज़ में, ये गीत सुने चाहत हवन दरमिया जी। और दरमिया जी आप हवा मोदालबिया से, मीरा भाई दरमिया आप ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करत हवा और ये बखत जितना कोई हमने के सुनत हवा जा और जितना कोई के घर में गीत गवाई के मौसम चलता, गीत गवाई के जो वातावरण बा वो बंद कर बा, तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। गीत गवाई खाली खुशहाली ही कि नहीं बल्कि एगो बहुत ही प्रतीकात्मक एगो रिवाज एगो विधि है जेकर से एगो शादी शुरू होवेला। तो चला ये सुहावन गीत आप सब कोई के नाम मीराबाई दरमिया की फरमाइश पर।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening to RM3 Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:36 हो बा और आप बहुत प्यार के साथ बहुत वफादारी के साथ हमके सुनत हवा और बातचीत भी जारी बा हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जन गीत चली भाई अब्बू के नाम भाई अब्बू जे हमेशा हमने के सुनेलन आप सब कोई की तरह और हमेशा फ़ोन करेलन और आप सब कोई के एगो खास गीत है एगो विशेष गीत है जो आपके सबसे मनपसंद है और वही गीत आप लोग जब कोई सुनी वो गीत जान जयन कि ई इनकर या उनकर पसंद के है। भाई अबू के पस मन पसंद गीत है सब कोई जाने ला एक था धोती पोती पगड़ी और दूसरा है छोर के मोरिसवा। छोर के मोरिसवा ये गीत खाली मॉरिशस में जे लोग बा वो लोग ही नहीं बल्कि ख़ास तौर पर जे लोग मॉरिशस से बाहर हवन जा वो लोग के मनपसंद गीत है। आतिश भगीरथी के आवाज़ में ये बहुत खूबसूरत गीत जेकर में बहुत बड़ा बड़ा बात छुपल बा मन के छुए होला बात छुपल बा। भाई अबू अफेज असलम आयाज जयर जयरा रईस काला चोटी आपी उनकर दोस्त और उनकर बीवी के

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ
4: खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं मगर उनको सात खून माफ है सर, आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है।
5: क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं?
6: How dare you talk to my father like that?
7: 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए।
6: आपके लिए आपके सिद्धांत ही सब कुछ है, कभी सोचा कि आपका परिवार किस तरह जी रहा है?
3: खुशबू से शनिवार 16 मई को रात के 9 बजे MBC 3 पर हिंदी फीचर फिल्म आरक्षण 2011 की मूवी आरक्षण। इस फिल्म में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान। आरक्षण।

रात के 10 बजे में 10 मिनट कमती बा और 11 बजे तक हमने के साथ रही. बहुत सुंदर सुंदर जन आंकड़ा बा हमने के सामने बा 10 10 और फिर 11. और अभी हमने के सामने 1 घंटा और 10 मिनट बा आपके मनपसंद गीत नोट करे के चलावे के और ओकर आनंद उठावे के. रात के समय ढेर कोई सफर पर हवा जा, ढेर कोई सीमा में हवा जा, और बीच सीमा में ये बखत पुलिस भी आपके नजर आए. ये खातिर आपके चाहिए बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ी चलावे के. जितना सावधानी लेबा उतना सबके सुरक्षा चली, आपके भी दूसरों के भी. और जब बीच सीमा में पुलिस के बात चलेला तो एकर पर एक बहुत सुंदर गीत बनल बा रतन हरि के आवाज़ में. और ये गीत सुने चाहत हवन आंसले ई बखत. तो चला जितना कोई ई बखत सफ़र में हवन जा और हांसले खातिर भी ई सुंदर गीत रतन हरि के आवाज़ में.

ये बखत आप सुनत रहला रतन हरि के आवाज में बीच सीमा में पुलिस रोके और बिना फिटनेस बिना लाइसेंस के गाड़ी तक चाहे छूबे नहीं करे के और दू को बात बा जे आपके पास लाइसेंस नहीं रही तो वो काम नहीं कर जोन काम के लाइसेंस नहीं बा और जे लाइसेंस रही तो वो लाइसेंस के पूरा पालन कर नहीं तो ओके चाहे लौटा देवे के और चली जा एगो अगला गीत के ओर बढ़ब जा सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली 10 बजता और ये गीत के मांग काफ़ी बुनेरे से कर ले हवन अमृता गणेश पितों से और अमृता जी ये गीत अपन पूरा परिवार गणेश परिवार के नाम सोनिया परी के नाम और विशान और पूनम के नाम करत हवन हमेशा की तरह और चमेली चमेली के ढेर फान बा ये गीत बहुत कोई के पसंद बा ये गीत वाकवा के सुदेवी के भी नाम सुदेवी अक्सर हमने के व्हाट्सएप मैसेज भेजलन और अपन फरमाइश सामने रखेलन हमेशा के तरह ये गीत आप ललिता दीदी आत्माराम भैया सुनीता शोभा देवीना केशनी कृषय कृषिका जे मालेंगा से हवनजा लक्षिका के नाम करत हवा साथ में रामरतन परिवार के नाम भी और आपके साथ साथ ये गीत अनीता जी के नाम भी जे फ्लिक ऑफ लक से हवन और

अनिता जी, आप भी अक्सर हमने के मैसेज भेजेला। आप ई गीत अपन बहिन शोभा, आराधना, लक्ष्मी, अनुराधा लक्ष्मी के नाम करत हवा और सब रेडियो मॉरिशस टीम के नाम भी। तो चला आप लोग के नाम ई सुंदर गीत चमेली चमेली सुनीता ननकू के आवाज़ में।

रंभा राम तोहल के ये बहुत ही मशहूर गीत के बाद अगला गीत भी एगो बहुत ही मशहूर कलाकार के आवाज़ में, जे आज तक हमने के बीच नहीं हवन, लेकिन उनकर आवाज़ आज भी हमने के एहसास दिलावेला कि आज भी वो हमने के बीच ही हवन। और हमने बात कर रहे थे जा विनोद शिवदत्त जी के दगा दिले रे सोनरवा, ये गीत सुने चाहत हवन रोजिल से साजिद। साजिद हमेशा की तरह अपन दोस्त सरोवर के नाम ये अगला गीत करत हवन। और ये बखत जितना कोई भी ये प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम, और उनकर संगे संगे ये गीत के फरमाइश कर ले हवन बेलिया से आत्माराम जी। आत्माराम जी हमेशा की तरह अपन चार गो बहिन के नाम ये गीत करत हवन, चार गो ऐसन बहिन जोन रेडियो से रेडियो के माध्यम से उन लोग के रिश्ता नाता जुड़ल बा। और ये चार गो बहिन हवन सुदेवी, ललिता, प्रभावती और छोटी। तो चला ये गीत विनोद शिवदत्त के आवाज़ में दगा दिले रे सोनरवा, जेकर जेकर भी ये मनपसंद गीत है उस सब कोई के नाम।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। RM3

अच्छे गावे के मौसम चलता, शादी ब्याह के मौसम चलता। अब शादी ब्याह के अलावा कितने घर में ललना चलता, कितने जन्मदिन और साथ में सालगिरह मनावल जाता, चाहे उस शादी की सालगिरह रही, चाहे वो मेल मुलाकात की सालगिरह रही, तो खुशी मनावे के चाहे हर एगो मौका के फायदा उठावे के। खुशी एगो फैसला है, ऐसे नहीं चाहिए सोचे के कि आज मौसम अच्छा बा तो ये वजह से आज दिल खुश रही, आज सब कोई ठीक से बात करा था तो ये वजह से दिल खुश रही। जी नहीं, खुशी चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति रही तब भी जे आपके संकल्प रही खुश रह के, तो आपके मन हमेशा झूमी गावी, हमेशा नाचते रही। और भोजपुरी सब कोई की नचेले बा ये गीत सुने चाहता वन। मॉरिशस से दूर फ्रांस से शीला और सुरेन, आप दोनों जना अपन सब लड़का के नाम ये गीत कर था वजह, अपन सब भाई बहन भौजाई और नाती पोता सब कोई के नाम, साथ में मॉरिशस में भी जितना कोई भोजपुरी बॉयज़ के शौकीन है वजह, खासकर कुनाल बाबूलाल के आवाज़ के जे प्रेमी हो वजह, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

इबकत आप सुना था वह रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का। आज बीफे 14 मई के ये रात्रि अब समाप्त हो जाए। थोड़े ही देर में एक घंटा आधा से थोड़ा जस्ती समय में, और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह आपके साथ खातिर, आपके प्यार खातिर, आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेज खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़े घड़ी में हमने के फ़ोन कर लन बॉशरी के धनी जी। धनी जी बॉशरी से हवन, और आजकल ठंड के जो असर बा वो सब कोई के छूले ले बा, सब कोई जाना था कि अब सर्दी के मौसम चला बा और चाहे अब थोड़ा जस्ती ख्याल रखे के और ओढ़े पहने के भी अब जो शैली बा वो भी बदल जाए, जस्ती ओढ़े के चाहे। और रात के समय था सब कोई के ठंडा लगता बॉशरी में और जस्ती ठंडा लगता, और ऐसन में आप सुने चाहता हुआ हमेशा की तरह आपके मनपसंद गीत, जैसे थोड़ा घर ही आगे बोल ली सब कोई के एगो मनपसंद गीत था। और जब ये नाम सुनबा तो वो गीत के भी ख्याल सकबा कर लेवे, और वो गीत सुनबा तो आपके ये बात के समझ चलाए कि ये के मंगले हुई। तो चला साथ में सुनी जा फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गर्ल एगो भोजपुरी गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में, जो सलमान खान और भाग्यश्री पर फिल्मावल कर रहा है।

शारदा सिन्हा के आवाज़ के बाद अगला जो गीत चली वह विनोद सिद्दत की आवाज़ में ठेला ठेली और ये गीत सुने चाहा था वन सूरी नाम से बल्कि सुयाक से श्रीमती जी अपन पूरा परिवार के नाम ये गीत करा था वन

तीन गो बेटा बेटी और नाती पोता के नाम और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह और रात के 11 बजे तक हमने के साथ देवा था वजह आप सब कोई के नाम ये अगला गीत बहुत बहुत शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब और दुगो गीत चली आप खातिर एकता किशोर खिमिया के आवाज़ में जलसा लालबा और फिर पूर्णिमा फोकेरा के आवाज़ में पिया परदेस हमने की मुलाकात कल फजर के फिर से हुई और नहीं तो आवत बीफे के फिर से मिलब जा भोजपुरी तड़का में और अभी से आवत बीफे तक हमने के मुलाकात जब तक फ़ोन पर नहीं हुई अपन ख्याल रखिया जेकर घर में खुशी के मौका बा खुशी के खूब आनंद उठावा और जिंदगी के हर एक पल के खुशहाली मनावा हमने के साथ हैजे तक रहल आज के रात आपके शुभ रात्रि नमस्ते।

0: संगे
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सेंटर 95 95 नॉर्थ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। जी नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। आ गई हूँ बिल्कुल जी फिर से वापस इस खूबसूरत से सफर में आपका हम सफर बनने के लिए। तो बस आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए हमारा साथ देने के लिए। ऐसे खूबसूरत नगमे हम लेकर आई है चुन चुन कर, खास कर आपका दिल बहलाने के लिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए। तो ये रहा अगला नगमा आपके नाम।

वैसे दोस्तों जब लव्स कम पड़ जाते हैं तब पुराने गाने दिल की बात कह देते हैं। रेडियो मॉरिशस पर सुनिए सुनहरे पल, एक ऐसी महफिल जहां हर मेलोडी में बसी होगी यादें और सिर्फ मोहब्बत।

आंखें बंद कर लीजिए मेरी जान और खुद को ले जाइए उस खूबसूरत दौर में जहां रेडियो पर बजते थे दिल को चू लेने वाले गीत सुनहरे पर सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला नगमा हम लेकर आए हैं स्पेशली उन तमाम सुनने वालों के नाम जो बड़े ही प्यार से बैठे और अपने मीठी मीठी यादों में खो चुके हैं।

पुराने गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं, जिंदगी के वो पल होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं दोस्त। तो जुड़िए रहे हमारे साथ और महसूस कीजिए उन्हीं सुनहरे लम्हों को सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। और ये पल काफी यादगार रहेगा क्योंकि फिलहाल के लिए हम आपकी यादों को चीरने वाले हैं।

प्यारे से शाम एक कप चाय, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ दोस्तों, सच अ लवली कॉम्बिनेशन, पुराने गाने, पुरानी यादें और एक कप चाय, और साथ में पुराने बॉलीवुड के अमर गीत। वाह, बस इसी खूबसूरत एहसास का नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

ये वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊ तेरा पीछा ना ना।

वो दौर ही कुछ और था मेरे दोस्त, जब गाने सिर्फ सुनने नहीं दिल में उतर जाते थे। मानो या ना मानो, हर सिचुएशन के लिए एक गाना तो फिट होता है ना, और बॉलीवुड ने हर एक इंसान की लाइफ की सिचुएशन के ऊपर एक ऐसा गाना जरूर निकाला है कि बस सुनते ही आपको वो लम्हे वो पल याद आ जाए। आज फिर वही एहसास लेकर आई हूँ मैं सुनहरे पल में, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे देखा जाए कुछ आवाजें कभी नहीं भूलती ये दुनिया। रफी साहब, मुकेश दा, लता जी, किशोर दा और कितने सारे हमारे बहुत ही महान कलाकार हैं। उन्हीं लेजेंड्स को हम याद करते हैं जब भी हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे इन यो सुनहरे पर। बिल्कुल जी, उन्हीं लेजेंड्स के अमर गीतों के साथ सजती हैं हमारी ये खूबसूरत सी महफिल सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

You're listening RM Free Radio. Radio. Yeah.

कोई शख्स आम तुझी में बसा है अल्लाह तुझी में है राम इंसान है इंसानियत की खूबियां तुझ में तमाम ए बंदे इस जहां में कुछ खास है तेरा काम